0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई

0: मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा, इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री

0: भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
1: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश के मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने डॉ. खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ. जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ. रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला

0: 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। वेनेजुएला'स एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज टू बी ऑन अ 5-डे विजिट टू इंडिया बिगिनिंग टुडे। सीनियर कांग्रेस लीडर डीके शिवकुमार टू बी स्वॉन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका दिस आफ्टरनून। West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका मनमीदार जमीत और आप सभी का तहदिल से स्वागत करता हूं 107.1 FM रेनबो पर। आपने मस्त मुंबई में मतवाले राही इस सेगमेंट में हमारे संग सफर करना अगर तय किया है तो 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें बतला भी दीजिए कि आज हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। वैसे समय

कि ये जो रेखा है वो हाथों में सीमित रहती नहीं है, मगर एक बात तो सच है, ये पल हमारे हाथों में नहीं है, इसलिए हर पल को जीना ही सबसे बेहतर दवा है। बस इसलिए कहना चाहूंगा, कल को भूल कर देखो, आज को जी कर देखो, आने वाला पल खुद ही सवर जाएगा। इसी तरह जिंदगी को जी कर देखो और FM रेनबो सुनकर देखो। बने रहना आर जमित के संग FM रेनबो।

सपनों की इस नगरी में हर गली एक नई कहानी है, यहाँ हर एक राही चलता फिरता मतवाला राही है। नमस्कार मुंबई और हमारी सारी पब्लिक को मेरा यानी आरजे अमित का सलाम। कहते हैं वैसे ये शहर कभी सोता नहीं है और यहाँ के लोग कभी रुकते नहीं हैं। स्वागत है आप सबका जहाँ रफ्तार ही जिंदगी है और मस्ती ही बंदगी है। स्वागत है मस्त मुंबई के सेगमेंट मुंबई के मतवाले राही में। मुंबई के मतवाले राहियों, आपका मनमीत आरजे अमित लेकर आया है 107.1 FM रेनबो पर ये सबसे

एनर्जेटिक सेगमेंट। और आज पता है क्या है, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, और इस बार की ऑफिशियल थीम है साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। लेकिन बॉस, मुंबई की इस तपती गर्मी में साइकिल चलाने निकलो तो फ्यूचर ग्रीन हो ना हो, मगर चेहरा धूप से लाल पीला जरूर हो जाता है, कपड़े भीग जाते हैं। खैर, गर्मी को मारो गोली, फिट इंडिया के इस सफर में पैडल मारते हुए सुनते हैं ये एक जबरदस्त कूल गाना। बने रहना FM रेनबो पर।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण अब आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं।

0: बना दे सोला साल।
1: क्या
0: लड्डू? ये लड्डू मेरे भंग वाले दोनों।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: सुबह के 9 बज चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो पर मस्त मुंबई कार्यक्रम और मैं हूं आपका मनमीत आरजे अमित आप सभी के संग। प्रमोद चिंचोलकर हो, वासुदेवन हो बदलापुर से, रजनीकांत पाटिल, रघुनाथ खानुकर, फिरोज सिगानपुरिया, अवधेश मौर्या जौनपुर से, पंकज मोहोड़, प्रदीप अनंत कृष्णन, दादर से बाबा है मंगेश म्हात्रे, माधव वाघ, हर्षिद्रा पाटिल, इन जैसे कई सारे श्रोतागण हमारे संग जुड़ चुके हैं। और ये पता है मुझे कैसे पता चला? ये हर कोई मुझे मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप के जरिए 8657661071 इस नंबर पर। अगर आप भी हमारे से जुड़े हैं तो हमें भी बतला दीजिए ताकि पता चले कि यार हमारे श्रोताओं में और कई सारे नाम जुड़ चुके हैं। दोस्तों, मुंबई के ट्रैफिक का तो एक ही असूल है, चाहे मर्सिडीज हो या ऑडी, रेंगना सबको लोकल ट्रेन की स्पीड में ही धीरे धीरे पड़ता है ना। लेकिन ऐसे में हमारी साइकिल ही असली लोकल बनकर बिना हॉर्न बजाए हर ट्रैफिक जैम को चीर कर निकल जाती है। इसलिए तो सरकार भी नमो फिट इंडिया साइकिलिंग क्लब्स बनाकर सबको दो पहियों पर आने को कह रही है, है ना। तो भाई, पेट्रोल का खर्चा बचाओ, सेहत बनाओ और मजे से सुनो ये अगला झक्कास ट्रैक संग बाय मोहम्मद रफी।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

सुन रहे हैं ना आप 107.1 एफएम रेनबो पर मस्त मुंबई। मैं हूं आपका मनमीत आरजे अमित। और पता है गर्मी इतनी है कि हाल ही में कई लोगों ने ये सलाह दी है कि धूप से बचना है तो जेब में

आज रख कर घूमो। अब जरा सोचो, एक तो बंदा वर्ली सी फेस पर साइकिल चला रहा हो, ऊपर से जेब में प्याज, रास्ते में चलते चलते अगर किसी को भूख लग गई तो वो साइकिल रोकेगा और भेलपुरी में प्याज कतरना शुरू कर देगा। फिटनेस की फिटनेस और स्वाद का स्वाद, इसे कहते हैं असली मतवाला राही। चलिए मूड को थोड़ा और रिफ्रेश कराते हैं। लता मंगेशकर और अमीर भाई कर्नाटकी ने गाए इस गाने के साथ।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मॉस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

9:16 हो चुके हैं दोस्तों। आज मुझे आनंद इस बात का हो रहा है कि कई सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जानते हैं अमित क्या कहता है कि बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे, है ना। और अगर ये अवसर हमने ढूंढा है तो उसे हम सेलिब्रेट करेंगे कैसे, अरे कई सारे गानों के संग, बातों के संग। अब देखिए प्रणव शिंदे जी, प्रकाश शिंदे जी, गणेश पाटिल, इन सभी का नाम जुड़ चुका है, पंकज मोहोड, विजेंद्र कटोल, सुरेश काशीनाथ पाटिल और वासुदेवन जी हैं, बदलापुर से रजनीकांत पाटिल हैं, अवधेश मौर्य जी हैं, प्रदीप अनंत कृष्णन हैं, दादर से बाबा है, इन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत तो करता ही हूँ। बट एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए हर किसी को लगता है कि ये कभी ना कभी अपने घर की कोई गाड़ी या टू व्हीलर या फोर व्हीलर निकाल के हम कहीं घूमने जाए। कभी आपने सोचा है कि फैमिली के साथ आप साइकिल की भी सैर कर सकते हैं? कभी सोच कर देखो, हर कोई अपनी जिंदगी में रोज़मर्रा

आपके जीवन में थोड़ा सा परेशान होता है, मगर साइकिल की इस सवारी में कभी आपको अगर मौका मिले परिवार के साथ जाने का, हर कोई साइकिल पे है, चाहे छोटा बच्चा हो, आप हो या आपकी बीवी हो, तो ज़्यादा मज़ा आए तब पता चले। अरे यार, कभी कभी ऐसे पल भी जीना काफ़ी ज़रूरी होता है ना। और उतने में अगर साइकिल की चैन उतर जाए तो हम कहेंगे यार पल भर में ये क्या हो गया, अभी तो अच्छी चल रही थी साइकिल। सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

कभी आपको याद आता है कि यार साइकिल के चैन उतरने के बाद आपने यहाँ वहाँ देखा और फिर पता चला हो आपकी साइकिल के चैन वहीं उतरी है जहाँ आपके मनपसंद चेहरे का घर है, और फिर वो पल आपको ऐसे लगता था यार बस कुछ देर हम यहीं गुजारे, खिड़की से ताके और फिर वो हसीन चेहरा नजर आए जिस चेहरे के इंतजार में हमने कई दिन बिताए हैं, है ना। आजकल के ज़माने में कहाँ साइकिल, कहाँ वो चैन उतरना और कहाँ उनका मुखड़ा देखना। वीडियो कॉल पे हम सभी मशगूल हैं, मगर पहले एक बार उनका दीदार करने में हम सब इंतज़ार किया करते थे। क्या हम भूल पाएंगे उस पल को? नहीं ना। इसलिए सुनिए ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे संग जितने सारे लोग जुड़े हैं उनमें हमें प्रमोद चिंचोलकर जी मैसेज करते हैं अकोला से और कहते हैं, देखो ये वर्ल्ड बाइसिकल डे है उसके लिए मैं ज़रूर शुभकामना देता हूँ, मगर साइकिल के ज़रिए कई लोग सब्जी बेचते हैं, कई लोग अंडे बेचने के लिए जाते हैं, कई लोग दूध डालते हैं, कई लोग पेपर की लाइन डालते हैं। अब देखिए, आज ज़माना कितना भी क्यों ना बदला हो, मगर उन्हें अपना गुजारा करने के लिए ये जो बिज़नेस चलाते हैं उनके लिए साइकिल का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी कॉस्ट जो कम हो जाती है ना, खर्चा कम हो जाता है ना, पेट्रोल का खर्चा ना डीजल का खर्चा, ऊपर से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। मतलब जो एक्सरसाइज करने के लिए हम घर से बाहर नहीं

निकल पाते तो उसी बहाने एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि हम साइकिल जो चला लेते हैं और हम ज़मीन से जुड़े भी रहते हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो ज़रूर साइकिल पे एक राउंड मारना, और वर्ल्ड बाइसिकल डे के ही दिन नहीं बल्कि साल के हर दिन साइकिल का सहारा लेके अपनी सेहत को भी फिट और फाइन रखना। बने रहना आपका मनमीत आरजे अमित के संग एफएम रेनबो पर। आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई, सेगमेंट चल रहा है मुंबई के मतवाले राही।

लोनावला में ब्लाइंड लोगों का एक आश्रम है और उसी आश्रम से जगन्नाथ केदारी जी हमें मैसेज करते हैं और कहते हैं कि भैया हम तो ये दुनिया देख नहीं पाते मगर बचपन से जब कभी मौका मिला साइकिल पर बैठने का तो हमारे साथियों ने कभी हमें धकेला या फिर हमें कभी उन्हें पुश करने का मौका मिला। तो ये साइकिल का अनोखा अंदाज हर किसी के जीवन से कभी ना कभी कैसे ना कैसे तो जुड़ा हुआ जरूर होता है। बचपन में देखिए छोटे बच्चे होते हैं ना, वो साइकिल चलाते हैं, वो दो पहिए उन्हें कितने अच्छे लगते हैं ना, मगर उन पहियों पर पता नहीं होता कि ये जिंदगी उन्हें बैलेंस करनी है और ये बैलेंस करने का खेल हम सभी को अगर आ गया तो मुझे लगता है कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती हैं और हम वो पा लेते हैं जिसके लिए हम जिंदगी जीते हैं। चलो खुश रहो, मुस्कुराते रहो और साथ ही साथ साइकिल चलाते रहो, यही कहना चाहेगा आपका मनमीत आरजे मीत ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

भाई देखिए, अगर आपने साइकिलिंग शुरू कर दिया ना, तो एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो घाटोबर के हमारे मतवाले राही हैं, ऑडियंस हैं, संदीप अपना नाम बताते हैं और वो श्रोता बनकर हमारे संग जब जुड़ जाते हैं तो वो कहते हैं अमित

भाई देखो मैंने साइकिलिंग तो शुरू कर दी है और मेरे जिंदगी का सारा स्ट्रेस गायब हो गया। मैंने बोला कैसे? भाई देखो साइकिल पर पीछे पत्नी के बैठने की जगह नहीं होती और हैंडल पकड़ने के कारण फोन उठाने का झंझट भी खत्म हो जाता है। इसका मतलब साइकिल सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि पतियों के मानसिक संतुलन पर भी बहुत असर कर जाती है। इसी बात पर हम तो बड़े खुश हो गए। वॉल्यूम बढ़ाओ और एंजॉय करो ये गाना क्योंकि साइकिल पे अब हसीनाओं की टोली आने के लिए तैयार है आपको मिलने के लिए। बने रहना FM रेनबो पर आपका मनमीत आरजे अमित के संग मस्त मुंबई कार्यक्रम में।

भाई साइकिल पे हसीनों की टोली देख के तबीयत यू डोली, मगर मुझे तबीयत डोलने का मन तब होता है या वो एहसास तब होता है जब हमारे श्रोताओं की टोली व्हाट्सएप पे जुड़ जाती है। चेतन कुमार जी गया बदा बिहार से हमें मैसेज करते हैं, और साथ ही हमारे एक और लिसनर हैं, सीनियर सिटीजन हैं राजेंद्र खाजेकर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और नवी मुंबई से पूजा धनोरकर हैं जो कहती हैं कि मैं तो योगा टीचर हूं मगर साइकिल चलाना मेरे लिए भी बहुत बहुत पसंदीदा खेल है। गणेश पाटिल हैं, फिरोज सिगानपुरिया, सुरेश काशीनाथ पाटिल, मनु मनोज, वासुदेवन जी, रघुनाथ खन्नोकर, अवधेश मौर्या जी हैं, प्रदीप अनंत कृष्णन, संदीप जी हैं, मंगेश मात्रे जी, प्रमोद चिंचोलकर, श्रेय राउत और प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे, विजेंद्र घटोल, साथ ही हमारी एक और लिसनर डॉक्टर मंजुषा चौगुले जी, प्रमोद कारखानी, श्रीधर मोरसकर, विठल मुंगा से, गुलाब गायकवाड़ संगमनेर से हमें मैसेज करते हैं, रजनीकांत पाटिल जी हैं, पंकज मोहट जी हैं, आदर्श कनौजिया, शुभलक्ष्मी मस्तकार, धनंजय और दादर से बाबा, आप सभी का मैं आरजमी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा ठीक 10 बजे आप हिंदी में समाचार सुन पाएंगे और समाचार के उस पार ठीक 10:02 पर आप सुनेंगे आपकी याद आती रही, ये सुप्रसिद्ध गायिका छाया गांगुली से यूनुस खान की बातचीत। जरूर जुड़े रहना FM रेनबो पर आपका मनमीत RJ अमित के संग।

चलते चलते मतवाले राहियों को बस यही कहूंगा कि साइकिल को सिर्फ साल में एक दिन गैरेज से बाहर मत निकालिए। 7 जून को फिट इंडिया के मेगा कोस्टल राइड का हिस्सा भी बनिए, पर्यावरण भी बचाइए, और जो रोज हम जंक फूड खाते हैं, पेट बाहर आ गया है ना, उसे अंदर दबाइए। अब आपका मनमीत आरजमीत आपसे इस घंटे के लिए विदा ले रहा है। मिलेंगे 10 बजे समाचारों के उस पार नमस्ते भारत कार्यक्रम में।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर यानी 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब तक के प्रमुख समाचार। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। डीके शिवकुमार आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक और डीकेशी के नाम से लोकप्रिय डीके शिवकुमार शाम 4:05 पर बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। समाचारों में आगे, म्यांमार के अध्यक्ष मीन आंग वाइंग, इनके सम्मान में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कल मुंबई स्थित महाराष्ट्र लोकभवन में एक स्वागत समारोह और रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समाचार में आगे, गुजरात के सूरत में कल एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सूरत के बरदोली कस्बे के पास महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की 2 बसों की टक्कर के कारण हुआ। इस दुर्घटना में 15 से अधिक घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और समाचार के अंत में खबर है खेल जगत से जुड़ी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में भारत के लिए मिले जुले परिणाम रहे। पीवी सिंधु ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है, वहीं लक्ष्य सेन बाहर हो गए। आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी, पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ी अपना अपना मुकाबला खेलेंगे।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप आकाशवाणी के 107.1 FM Rainbow पर अब सुन पाएंगे एक विशेष मुलाकात। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष्य में सुप्रसिद्ध गायिका छाया गांगुली से यूनुस खान की विशेष मुलाकात। निर्माण सहयोग सुहिता मराठे और प्रस्तुत करता है नेहा खरे।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ हैं जानी मानी पार्श्व गायिका और आकाशवाणी की हमारी पूर्व सहयोगी विदुषी छाया गांगुली। छाया जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: आपको भी नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से मुझे मौका देने के लिए।
0: ये हमारा सौभाग्य है। छाया जी, पिछली बार हमने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आपकी गजल रात भर आपकी याद आती रही सुनने का लुत्फ उठाया था। एक बात बताइए, जयदेव जी को 3 बार नेशनल अवार्ड मिला था, है ना
1: जी? उन्हें रेशमा और शेरा, फिर गमन और अनकही के संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था।
0: क्या बात है।
1: हाँ, और अनकही में तो पंडित भीमसेन जोशी जी ने भी गाया था।
0: बिल्कुल, अनकही में उन्होंने वो गाया था, रघुबर तुमको मेरी लाज।
1: जी, बहुत
0: अमोल पालेकर जी की
1: जी,
0: फिल्म थी।
1: अमोल जी के रेशमा और शेरा का गाना तू चंदा में चांदनी मांड पर आधारित एक कालजयी कॉम्पोजिशन है।
0: वाह वाह,
1: जिसे लता दीदी ने क्या खूबसूरती से निभाया है। लता दीदी अपनी शख्सियत को पीछे रखकर कलाकार की आवाज बन जाती थी।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: वो इस तरह गाती थी कि हर संगीतकार की विशिष्ट शैली उनके गाने में स्पष्ट झलकती थी।
0: सुंदर गाने का आपने चयन किया है और मुझे याद है कि ये बालकवि बैरागी जी की रचना है और अद्भुत गानों में इसका शुमार होता है। सुनते हैं, फिल्म का नाम है रेशमा और शेरा।

0: छह जी, जब आपको फिल्म गमन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, रात भर आपकी याद आती रही इस रचना के लिए, उस दिन की याद हमारे साथ साझा कीजिए। आपको राष्ट्रीय पुरस्कार की सूचना कैसे मिली और इससे जुड़ी बड़ी दिलचस्प कहानी है वो हमें बताइए।
1: जरूर, गमन की गजल आपकी याद आती रही के लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार 1979 में मिला था।
0: जी जी,
1: जब मैंने ये गजल गाई तब मैं 25-26 साल की थी। इत्तेफाक से मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी 26वां ही मिला।
0: वाह वाह, उम्र भी 26, पुरस्कार भी 26वां। जी,
1: तो हुआ ये कि उस दिन सुबह सुबह मेरी दीदी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रही थी। उन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की खबर टाइम्स में देखी और मुझे बड़े प्यार से गले लगाकर यह शुभ समाचार दिया।
0: वाह,
1: आकाशवाणी जाने से पहले मैं जयदेव जी को प्रणाम करने और उनका आशीर्वाद लेने उनके घर गई।
0: जी,
1: जयदेव जी भावुक हो गए, उनकी आंखें भर आई, बोले जो मैंने सोचा था आज नेशन इज रिकॉग्नाइजिंग।
0: क्या बात है, अब मैं महसूस कर सकता हूँ कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। उनकी इस बात में कितना आशीर्वाद और स्नेह है आपके लिए। जयदेव जी को फिल्म गमन के लिए सम्मानित किया गया था, नेशनल अवार्ड मिला था।
1: जयदेव जी को गमन के संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था उसी साल।
0: जी जी,
1: तो उनके ही पास मेरे पुरस्कार की सूचना आई थी, वही टेलीग्राम उन्होंने निकाल कर मुझे दिखाया और मेरे हाथ में दिया।
0: क्या बात है, देखिए ये वो जमाना था जब इंस्टेंट खबर नहीं आती थी। आज का जमाना ये है कि सोशल मीडिया के जरिए खबर आ जाती है। यहाँ हम ये सुन रहे हैं कि टेलीग्राम आता है, अखबार में छपता है, तब जाकर खबर मिलती है।
1: जी जी, और अपने दफ्तर पहुंची, इसी बिल्डिंग में मैं काम करती थी, सेंट्रल सेल्स यूनिट जो कि विज्ञापन केंद्र था। और जैसे कि दफ्तर पहुंची तो गमन के निर्देशक मुजफ्फर अली जी और उनके धर्मपत्नी सुभाषिनी जी, फिर अमीन सयानी जी और विज्ञापन की दुनिया के कई और लोग भी मुबारकबाद देने खुद आए।
0: वाह,
1: उस दिन सारा दफ्तर फूलों के गुलदस्तों से महक रहा था।
0: क्या बात है, वाह। छह जी, पुरस्कार समारोह के बारे में कुछ बताइए कि आपको किन से पुरस्कार मिला था और वो दिन कैसा था।
1: जरूर, पुरस्कार समारोह के लिए जयदेव जी मुझे अपने साथ दिल्ली ले गए थे।
0: जी जी,
1: और यह मेरा पहला प्लेन ट्रैवल था।
0: अच्छा,
1: राष्ट्रपति श्री नीलम संजीवा रेड्डी जी के हाथों से मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इस अवसर पर मेरे माँ बाबा भी उपस्थित थे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
0: अरे छह जी, अपने माँ बाबा का शुभ नाम भी हमें बताइए।
1: मेरी माँ का नाम था श्रीमती नीलिमा गांगुली
0: जी,
1: और पिताजी का नाम था श्री प्रबोध रंजन गांगुली।
0: नाम लेने से ऐसा लगता है कि जैसे वो साथ उपस्थित हों।
1: माँ बाबा के नाम से ही तो मेरा नाम है ना, सारा संसार है। अच्छा, इस अवसर पर जयदेव जी के निर्देशन में संगीत कार्यक्रम भी हुआ था।
0: अच्छा
1: जी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुरोध पर मैंने आपकी याद और कानन देवी जी का गाया कोई समझावे प्रीत सखी क्या है प्रस्तुत किया था।
0: ओहो, ये तो बहुत पुरानी किसी फिल्म का गाना है।
1: ये फिल्म लगन से था।
0: जी,
1: इस गीत के संगीतकार थे श्री आरसी बोराल, जिन्हें उस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
0: क्या बात है,
1: तो पुराने गानों के संगीत पर श्री जॉन डेविड जी की जबरदस्त पकड़ थी। उन्होंने ही मुझे आरसी बोराल जी की कॉम्पोजिशन सिखाई थी। जॉन दास से भी गिरिजादा ने ही मुझे मिलवाया था, और जयदेव जी की सलाह पर जॉन दा और तबला वादक श्री शरीफ भाई भी हमारे साथ इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली गए थे।
0: जी जी,
1: सब होने के बाद हम जब स्टेज से उतरे तो देखा कि आरसी बोराल जी सबसे आगे की रो में बैठे थे। मशहूर फिल्मी हस्ती, जूरी चेयरपर्सन चेतन आनंद जी और प्रिया राजवंश भी उसी रो में बैठे थे। उन्होंने भी बहुत स्नेहपूर्वक मेरे

0: आने की सराहना की। मैंने आरसी बुरल जी को प्रणाम किया, उनकी आंखें नम हो गई और वो बोले, माँ जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब मैंने ये गाना कंपोज किया था, तो तुमने ये गाना कैसे सीखा?
1: गजब।
0: तब मैंने उनको जौंदा से मिलाया, जो हमेशा से उनके बहुत बड़े भक्त थे।
1: क्या बात है रायचंद बुराल साहब। अच्छा, गमन के बाद आपका संगीत सीखने का सफर कैसा रहा, इस बारे में कुछ बताइए।
0: ऐसा हुआ यूनुस जी, गमन फिल्म के बाद से मैंने विदुषी मधुरानी जी से विधिवत तालीम ली
1: जी।
0: मधुरानी दीदी को भी मैंने पहली बार जयदू जी के घर पर ही सुना था
1: जी।
0: मधुरानी दीदी से सीखने की शुरुआत मेरी संगीत यात्रा का एक अहम मोड़ था
1: जी।
0: उन्होंने असीम धैर्य के साथ मुझे बहुत रियाज कराया, किन बातों पर ध्यान देना है और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर बहुत जोर देती थीं। रियाज कराते वक्त हमेशा समझाती थीं कि गाने में सुरीलापन और तासीर पैदा होनी चाहिए। उन्होंने ही मेरी संगीत साधना को दिशा दी। उनका आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उर्दू शायरी की गहरी समझ के साथ शास्त्रीय संगीत की रूहानियत पर पकड़, उनकी गजल गायकी की विशिष्टता है
1: जी,
0: जो उनकी कॉम्पोजिशंस में भी झलकती है।
1: बेशक। तो छाये जी, अब मुझे लगता है कि चूंकि उनका जिक्र हुआ है तो वो गजल सुनते हैं, लाई हयात आए कजा ले चली चले।
0: ये राग मारवा पर आधारित है।
1: वाह वाह वाह,
0: जौक साहब की गजल सुनिए।
1: राग मारवा में जो सोज है, दर्द है, वो बड़ा उभर उभर कर आता है।
0: सूर्य अस्त हो रहा है, समस्त हो रहा है, तो देखिए उसका जो ऋषभ लगता है उसकी फीलिंग आती है।
1: क्या बात, सुनते हैं।

0: चाय जी, आपने तो डॉक्टर अशोक रानाडे से भी सीखा था, है ना?
1: जी यूनुस जी, मैंने सुविख्यात म्यूजिकोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक रानाडे के मार्गदर्शन में पारंपरिक ठुमरी पर शोध किया था और उनसे कुछ पारंपरिक उपशास्त्रीय बंदिशें भी सीखी।
0: क्या बात है।
1: एक एल्बम सावन के लिए उन्होंने मुझसे एक बंगला टप्पा गवाया था, वो श्रोताओं को सुनाना चाहूंगी।
0: अरे जरूर। छाए जी, उस गाने के बोल क्या है?
1: बोरोशे घनो घनो घनो कैनो गौरजे,
0: वाह,
1: त्रिशाए चातुकी मोरे शोनो शोनो शोनो,
0: वाह,
1: मिलन समय निकट होइले बिरह अनुलो आरो अधिक जले, त्रिशाए बाड़ीछे बारी आनो आनो आनो।
0: क्या बात है।
1: तो आप इसका हिंदी अनुवाद जरा हमारे श्रोता को बता दीजिए।
0: घन बरसे झरझर घनन घनन क्यों गरज रहे बादल, बढ़ती ही जाए तृष्णा चातक की, मिलन का समय अब निकट ही, पर धधक उठा विरह का दावानल, चाहे जल वृष्टि हो और।
1: क्या बात है।

0: अच्छा जी, आपके सीखने की जो प्रक्रिया है वो तो आगे भी निरंतर चलती रही?
1: जी, ईश्वर की दया से काम के साथ साथ सीखना हमेशा चलता रहा
0: जी।
1: मैंने थोड़े थोड़े समय के लिए और गुणी जनों से भी संगीत सीखा, जैसे पंडित राम नारायण जी, डॉक्टर प्रभात त्रे जी, विदुषी शोभा गुट्टू जी, श्री शेखर सिंह जी और उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब।
0: क्या बात है। चाहे जी, संगीत सरिता में शास्त्रीय और फिल्म संगीत के दिग्गजों को बुलवाने का जो सिलसिला है वो किस तरह से शुरू हुआ ये बताइए।
1: ऐसा है कि संगीत सरिता तो पहले से ही प्रसारित होता था
0: जी।
1: इसके प्रोड्यूसर थे पंडित भुवनेश्वर मिश्रा जी। राग आधारित गीत सुनाकर राग के बारे में जानकारी दी जाती थी और रविवार को किसी कलाकार का साक्षात्कार होता था। हमारे वरिष्ठ उद्घोषक राम सिंह पवार जी इंटरव्यू लेते थे और मैं अनुरंजनी कार्यक्रम देखती थी
0: जी। जी,
1: जब मिश्रा जी रिटायर हो गए तब संगीत सरिता मेरे पास आया। आकाशवाणी के DDG श्री MP लेले, जो स्वयं संगीत प्रेमी थे, उन्होंने मुझे कार्यक्रम के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन करने के लिए कहा। उस समय में HMV की अनुबंधित कलाकार थी। जब मधुरानी दीदी से सीखने ऑफिस के बाद उनके घर जाती थी तब वहां भी बड़े बड़े उस्ताद कलाकारों को सुना। मेरे मन में आया कि यदि इन वरिष्ठ गुणीजनों को आमंत्रित किया जाए तो बहुत अच्छा और अनमोल कार्यक्रम बुना जा सकता है। ये सारी बातें मैं अपने अनुभवी सहकर्मी कब्बन मिर्जा जी से किया करती थी।
0: क्या बात है।
1: कब्बन मिर्जा जी ने कहा कि आप तो सभी कलाकारों को जानती ही हैं, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कीजिए और कलाकारों को बुलाती जाइए। मैंने ऐसा ही किया।
0: वाह।
1: एक एक कलाकार को आमंत्रित कर रिकॉर्ड करना शुरू किया। प्रत्येक कलाकार के सान्निध्य में उनकी विशेषता के अनुसार संगीत सरिता को ढाला
0: और हर भाग अपने आप में खास और अनमोल बनता गया और लोग आज तक संगीत सरिता की उन श्रृंखलाओं को याद करते हैं
1: जी। गुणी जनों के आशीर्वाद से बहुत काम उस समय मेरे ख्याल से बहुत फ्रूटफुल रहा
0: जी। जी,
1: उस समय हमारी उपनिदेशक श्रीमती उर्वशी जोशी थी
0: जी,
1: जिन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया। शुरू शुरू में मुंबई में बसे वरिष्ठ कलाकारों को आमंत्रित किया
0: जी,
1: जैसे बेगम परवीन सुल्ताना, पंडित दिनकर कायकिनी, पंडित रमेश नाटकर्णी, पंडित रघुनाथ सेठ, उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां, डॉक्टर विद्याधर व्यास, पंडित अजय चक्रवर्ती। फिर कुछ रिकॉर्डिंग्स अन्य केंद्रों से भी मंगवाई गई, जैसे पंडित ब्रिजभूषण काबरा अहमदाबाद से
0: जी,
1: पंडित अमरनाथ जी दिल्ली से, विदुषी वीना सहस्रबुद्धे पुणे से।
0: वाह वाह वाह।
1: फिर जब श्रीमती विजयलक्ष्मी छाबरा हमारी उपनिदेशक नियुक्त हुई तब हमने भारत के हर कोने से कलाकारों को विविध भारती मुंबई में आमंत्रित करना आरंभ किया
0: जी।
1: श्रीमती छाबरा के कुशल नेतृत्व में जब कलाकारों के आने जाने का खर्च उठाने की सुविधा मिली तो यह सब संभव हुआ। उस्ताद अमजद अली खान साहब को दिल्ली से और डॉक्टर एन राजम जी को वाराणसी से बुलाकर हम सहजता से श्रृंखला रिकॉर्ड कर सके।
0: वाह वाह वाह। तो छाया जी, यहाँ उसी में से कुछ

0: छाया जी, उस्ताद अमजद अली खान साहब की अनमोल रिकॉर्डिंग हमने सुनी। ये संगीत सरिता की एक श्रृंखला से थी, सरोद और उसकी गायकी। इसी तरह से विदुषी एन राजम की एक शानदार श्रृंखला थी, उसमें से कुछ सुनवाया जाए।
1: जरूर, वायलिन और उसकी गायकी,
0: क्या शानदार श्रृंखला।
1: खास बनारस से आके हमारे लिए 8 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए थे
0: जी,
1: और उसमें से कुछ अंश हम सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को।
0: जरूर।
2: आई है बारी भजन की, पहली पंक्ति शुरू होते ही साफ मालूम होता है कि अमुक रचना है।

0: छाया जी, ये दो अनमोल रिकॉर्डिंग सुनकर ऐसा लगा कि संगीत सरिता में आपने कितना विलक्षण खजाना जमा कर रखा है। पर आज के इस कार्यक्रम का वक्त खत्म हो रहा है, तो अब इजाजत लेने की बारी है। पर मुझे अभी बहुत सारी बातें आपसे और करनी है, तो अगले भाग में आपसे मुलाकात होगी और तब कुछ और बातें मैं आपसे पूछूंगा।
1: जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, अब फिर मिलेंगे।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के FM रेनबो पर आकाशवाणी @90 के उपलक्ष्य में सुप्रसिद्ध गायिका छाया गांगुली से यूनुस खान की विशेष मुलाकात। निर्माण सहयोग सुहिता मराठे, प्रस्तुतकर्ता नेहा खरे।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी मूवी माइलस्टोन हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन

भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए awards.gov.in ये वेबसाइट आप जरूर देखें। इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनमीत आर जमीद और 107.1 एफएम रेनबो पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। वैसे इससे पहले एक इंटरव्यू के साथ आप जुड़े हुए थे एफएम रेनबो पर। अब हमारे पास 15 मिनट बचे हैं और इस 15 मिनट में हम कुछ सदाबहार गीतों के संग आज जिनका जन्मदिन है ऐसे इलाय राजा को ज़रूर उनके गीतों के संग याद करेंगे। इलाय राजा साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है ना। अपने करियर में 7,000 से भी ज़्यादा गाने और 20,000 से भी ज़्यादा कॉन्सर्ट्स करने वाले इस इंसान को इंडियन फोक म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक को मिलाकर लोगों को एंटरटेन करना बड़ा रास आया। बेहतरीन म्यूजिक दिया इन्होंने और इतना ही नहीं, अपने म्यूजिक के लिए 5 नेशनल अवार्ड भी वे जीत चुके हैं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया। और पता है 2013 में एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार भारतीय सिनेमा के ऑल टाइम बेहतरीन संगीतकारों में से वे एक माने गए। और इतना ही नहीं, अमेरिकन वर्ल्ड सिनेमा ने इलाय राजा को 25 बेहतरीन म्यूजिशियंस में 9वां स्थान दिया है, तो ये बात भी काफ़ी अहम है। इसलिए आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बचे समय में मैं आपको सुनाऊंगा कुछ सदाबहार गाने जो कि उन्होंने कंपोज किए हुए हैं। उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मो कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: दोस्तों आज FM रेनबो पर नमस्ते भारत में ठीक 10:02 के बाद आपने एक इंटरव्यू सुनी छाया गांगुली जी से। बात करने के बाद यूनुस खान जी ने उनसे कई सारे सवालात किए और उनके जवाब देते हुए उन्होंने कुछ गाने भी सुनाए, कुछ किस्से भी साझा किए, मगर इसकी प्रस्तुति लोगों को काफ़ी पसंद आई है। हमारे श्रोता प्रणव शिंदे जी और अन्य कई सारे श्रोताओं ने अपनी राय इस पर भेजी है कि यह मुलाकात बेहद खूबसूरत रही और वे बार बार सुनना ज़रूर पसंद करेंगे। तो आपको बतलाना चाहेंगे कि इसका तीसरा भाग कल सुबह 10:02 पर प्रस्तुत होगा FM रेनबो पर। तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर वो कार्यक्रम सुनिए और FM रेनबो से जुड़े रहिए।

9:55 हो चुके हैं और अब मेरा जाने का समय हो चुका है। हमारी नेक्स्ट आरजे रोशनी भी स्टूडियो में मौजूद है अगले शो के संग, तो 11 बजे ज़रूर समाचार सुनिए और समाचार के उस पार और रोशनी के संग जुड़े रहिए एफएम रेनबो पर। जल्दी हमारी मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड टेक केयर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। सुबह के ठीक 11 बज रहे हैं और नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पे। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्रेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत का ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के खिलाफ वॉशिंगटन की सैन्य नीति की मजबूती से बचाव किया है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पारंपरिक हथियारों की क्षमता को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। और समाचारों के अंत में, महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। एलिस कैप्सी को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। इसी के साथ समाचारों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले कार्यक्रम के लिए बने रहो आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो सेवा पर। न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। मैं हूँ रोशनी। शुरू हो गया है कार्यक्रम ब्रेक फ्री। और ये क्या, आज ये ऐसा कैसे हो गया कि आते ही चलने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। 11 से 2 आपके साथ बातें होने वाली है। और आज 3 जून, आपको पता है आज क्या खास है, और गाना सुनते भी आप समझ जाओगे कि किस बारे में आज के ब्रेक फ्री में हम बातें करने हैं। सब जानना है, आपको भी शामिल होना है, तो बस सुनना है 107.1।

तेरे मेरे सपने फिल्म का बहुत ही प्यारा गाना एफएम रेनबो पर अभी हमने सुना, और ब्रेक फ्री में बातें हो रही है उस चीज़ के बारे में, वो बहुत ज़्यादा कूल भी है, पर्यावरण अनुकूल भी है, और उसी के साथ साथ हमें बेसिक से फिर एक बात जोड़ता है। अब ये तीनों बातें किसमें हो सकती है, तो वो है साइकिल। 3 जून आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे, और जैसे ही साइकिल की बात करते हैं अपने आप हम अपने बचपन में चले जाते हैं, और आजकल भले बजट या फिर फिटनेस संभालने के लिए साइकिलिंग की जा रही है, लेकिन साइकिल के साथ जो हमारी कोर मेमोरी है ना, वो बचपन से ही जुड़ी हुई है, और उसकी याद और उसकी निशानी घुटनों पर हम शान से लिए हुए हैं। वैसे साइकिल आपके लिए क्या है, उसका क्या महत्व है, या फिर साइकिल यानी क्या है आपके लिए?

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

और इसी शान के साथ शुभदा भी कह रही हैं कि उन्हें साइकिल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बात पता है, और पिछले 40 सालों से वो टू व्हीलर तो चला लेती है लेकिन साइकिल अभी तक चला नहीं पाई। ऐसे होते हैं गिने चुने लोग जिन्हें साइकिल बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे लिसनर्स हैं जैसे आदर्श कनौजिया, उन्होंने भी क्या खूब बात कही है कि साइकिल जो है वो फिटनेस का खजाना है। शुभ लक्ष्मी मस्तकर को भी बचपन के दिन याद आ गए। प्रणव शिंदे ने ऐसी ही मिलती जुलती बात कही है कि कैसे स्वस्थ जीवन के लिए और पर्यावरण के लिए भी, और उसी के साथ साथ अगर हमें अपना और हमारे आसपास जितने भी सारे लोग हैं, समाज है, सबका विकास करना है तो साइकिल एक बहुत ही अच्छा साधन है। गणेश पाटिल जो है उन्होंने भी ऐसी बात कहते हुए मैसेज किया है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े हुए हो, बचपन की यादें ताज़ा हो रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि साइकिल आपके लिए क्या है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए फिटनेस और बचपन की याद है, लेकिन साइकिल इससे ज़्यादा बहुत कुछ है। जानना है तो बने रहो रोशनी के साथ 107.1 आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: इतना दिल से पुकारा तो मैं फिर एक बार आ गई हूँ। और साइकिल फिटनेस के लिए कितना जरूरी है ये बातें कर रहे थे, तो उसमें फिरोज सिगन पूरिया भी जुड़ गए हैं, संजय दर्शन भी जुड़ गए हैं। उनका भी यही कहना है कि कैसे साइकिल से जो है हम सेहत बहुत अच्छे से, आराम से और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए बिना जो है हम सेहत बना सकते हैं, और कैसे ज़्यादातर लोग, चाहे वो छोटे गाँव हों या सुबह सुबह जो काम पर निकलते हैं वो सारे लोग भी जो है साइकिल उनके बड़े काम आती है। तो ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन साइकिल से ही ना हमें स्कूल के दिन याद आते हैं, क्योंकि स्कूल आना जाना इस साइकिल की वजह से ही होता था। और वो सारी यादें जो दोस्तों के साथ मटर गश्ती की थी आते जाते समय, वो सब कुछ याद आता है। और साइकिल सवारी करते हुए ही हमारा पहला क्रश जो था उससे हम टकराए थे, और वक्त बदल गया है, लेकिन साइकिल का जो एक चीज़ है या फिर एक सुंदर उदाहरण है वो वक्त वक्त पे दिया जाता है। आपको भी पता है, आपके साथ ज़रूर हुआ होगा और आपने भी ये किया होगा कि साइकिल बहुत कुछ ज़िंदगी ने, साइकिल के वजह से जो है ज़िंदगी ने पाया है उसके लिए साइकिल जिम्मेदार है, और इसी साइकिल का उदाहरण वक्त वक्त पर हमको मिलता आया है। ऐसे कब हुआ है, किस तरह मिला है, याद आ गई वो सारी बातें। मिलकर उन बातों को याद करेंगे, बचपन पे तो चले गए हैं, और आपकी कविताओं को भी पढ़ने का वक्त जो है कुछ देर बाद होने वाला है। तो ये सब कुछ जानना है तो क्या करना है, आप भी बने रहो और आपकी जितने भी सारे साइकिल साथी है उनको भी कहो कि ट्यून इन टू 107.1।
1: एक गायिका जिनकी सूंधी आवाज में है सुकून, जिन्होंने अपनी बेमिसाल गायकी के जरिए हासिल किया सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार,
2: आपकी आती रही।
1: उन्होंने संगीत सरिता कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी।
3: संगीत सरिता के श्रोताओं को आर डी बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं आशा भोसले, हम नमस्कार कर रहे हैं।

0: छाया गांगुली जानी मानी गायिका छाया गांगुली से एक आत्मीय बातचीत।
1: 2, 3 और 4 जून 2026 को सुबह 10:02 पर सिर्फ FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर।
2: रात भर आपकी यार आती रहे।
3: कभी लगता दूर है
4: ये दूरियां,
5: तो कभी लगता पास है।
6: रंगों में न जाने क्या बात है।
7: पल पल रंगते
5: दिल झूम उठा है अचानक ऐसे,
8: जैसे कोई हर वक्त दिल के पास है।
9: ये मजा रंगों का है, सुमधुर गीतों का है,
5: क्योंकि ये है आपका अपना
6: 107.1 FM रेनबो, दिल से
5: दिल तक।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

इसी गाने की तरह साइकिल के दिन जो थे बचपन के दिन, वो ऐसे ही सीधे सरल, सीधे साधे और बहुत ही प्यार भरे, बहुत मिठास से भरे थे। और उसके बाद ज़िंदगी में ये साइकिल उदाहरण के तौर पर वक्त वक्त हमारे जो है हिस्से आया। ख़ास तौर पर ज़िंदगी में हम जब भी डरे हैं, नाकामयाब हुए, और तब हौसला देने साइकिल की मिसाल ही दी जाती थी। तो शुक्रिया साइकिल का कि बचपन में ही हमने इसके बदौलत सीख लिया कि जब भी गिरेंगे नहीं, चोट नहीं लगेगी, तो अगर गिरेंगे नहीं, चोट नहीं लगेगी तो ना ही सीखेंगे और ना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये साइकिल में बचपन में सिखा दिया था, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और उसी साइकिल का आज वर्ल्ड बाइसिकल डे हम अपने तरीके से मना रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: जिंदगी कैसे दो पहियों पे चलती है बता दिया था तुमने, जब पहली बार गिरे थे ना तभी उठना सिखा दिया था तुमने, पीछे बैठा शख्स कभी बोझ नहीं लगता साथी का असली मतलब बता दिया था तुमने, हर पैडल के बाद कम होती दूरी मेहनत और मंजिल का रिश्ता समझा दिया था तुमने, आएगा जो कुछ जिंदगी में काम मेरे वो सब कुछ बचपन में ही सिखा दिया था तुमने, वही हमारी प्यारी सवारी साइकिल की सवारी, और बचपन में वो हमारे लिए फरारी की सवारी से कम नहीं थी।

शॉर्टनेस से भरपूर गानों के साथ जिंदगी की कितनी जरूरी बातें हम आज सीख रहे हैं। और ऐसे ही संजय दर्शन का भी यही कहना है कि साइकिल जो है अपने आप एक जीवन का संदेश है, क्योंकि जब टायर में हवा होती है और हमारे जेब में पैसे होते हैं, जैसे टायर में हवा होती है तब साइकिल चलती है, और हमारे जेब में पैसे होते हैं तब जाके हमारी जिंदगी आगे चलती है। जब ढलन चढ़ना होता है तो वो दुख ही समान होता है, क्योंकि वो जल्दी से कटता ही नहीं, और जब उतरना होता है साइकिल से तो जल्दी जल्दी उतर जाते हैं, और उसी तरह सुख भी होता है, सुख के पल बहुत जल्दी जो है बीत जाते हैं। तो साइकिल चलाने के लिए जैसे बैलेंस ज़रूरी होता है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी के लिए भी बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। और जब ज़िंदगी में सही मायने में बैलेंस हो, तभी जाकर हम कह सकते हैं ना ज़िंदगी को आई लव यू।

कहा था ना सभी कवि बन गए हैं, ऐसे ही कवि बने हैं हमारे लिसनर प्रणव शिंदे। साइकिल के बारे में वो कह रहे हैं, बचपन की वो अमीर सवारी याद है जब साइकिल की चेन उतरने पर भी मुस्कान आती थी, बिना पेट्रोल की भी जब हवा से बातें करती थी। वो दो पहियों की दुनिया आज भी दिल को लुभाती है। साइकिल का वो डंडा और कैची चलाना याद है, बिना पैडल मारे ढलान पर मुस्कुराना याद है। आज गाड़ियां तो बहुत है हमारे पास, मगर दोस्तों के साथ वो साइकिल का ज़माना आज भी याद है। वाकई वो ज़माना आज भी याद है, और आपकी वजह से और आपके साथ बातें करते हुए उस ज़माने को हमने फिर एक बार जो है जी लिया। तो उसी प्यारी प्यारी यादों को जो है हमारे दिल के करीब रखते हुए अगला गाना सुनते हैं, और रोशनी आपको मिलेगी ठीक 12 बजे समाचारों के साथ।

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। और अब जानते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा है कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सूरत में हुए हादसे में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की दो बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 15 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पालघर जिले के डहाणू तालुका के अम्बेसरी गांव के पास तीसरी पर्वतीय सुरंग का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार ये उपलब्धि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में तेजी से हो रही है प्रगति का महत्वपूर्ण संकेत है। यह पर्वतीय सुरंग 414 मीटर लंबी और 14 मीटर से अधिक चौड़ी है। और समाचारों के अंत में अब जानते हैं, आज विश्व साइकिल दिवस है। यह विशेष दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल स्थायी परिवहन साधन के रूप में मान्यता देने हैं। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। प्रादेशिक विभाग द्वारा समाचारों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। ठीक 12:02 के समाचार पूरे हो गए हैं और अब म्यूजिक कैफे कार्यक्रम शुरू हो गया है। ब्रेक फ्री में और म्यूजिक कैफे में भी आज हम उन सारी चीजों के बारे में बातें करेंगे जो पहले अगर देखा जाए तो वो जिंदगी का फलसफा थे, लेकिन आज की दुनिया में वो कूल की परिभाषा बन गए हैं। ऐसी सारी बातें जो हमें बैक टू बेसिक्स ले जाती है, पर्यावरण अनुकूल भी है और क्या है इसके साथ साथ के, जैसे मैंने कहा, बहुत कूल हमें महसूस होता है। लेकिन ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं पहले बहुत अजीब लगती थी, लेकिन वक्त के साथ इसके मायने बदल गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ है और किसके बारे में बातें होंगी, जानने के लिए बने रहो 107.1 पर, जो है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

जब भी हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं और खाना बच जाता है, तब हम क्या करते हैं और उस बचे हुए खाने के साथ क्या किया जा सकता है। अब ये बात है आशिमा के बारे में। बचपन में आशिमा अपने परिवार के साथ जब भी होटल जाती थी, उसकी माँ जो है साथ में स्टील का डिब्बा कैरी करती थी और इन्हीं डिब्बों में बचा हुआ खाना वो घर ले आती थी। छोटी आशिमा को बड़ी शर्म आती थी और उस वक्त लगता था कि पता नहीं माँ क्या ही कर रही है, लेकिन अब वो खुद बड़ी हो गई है, आसपास का जो माहौल देख रही है, दुनिया में जो कुछ चल रहा है, अब उसे यही आदत जो है काफ़ी कूल लगने लगी है और बड़े शान से ये सारी आदतें उसने भी अपना ली है और उसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और अपनी आदतों के

मम्मी डैडी को तो याद कर लिया, लेकिन अब कुछ और लोगों को भी याद करते हैं। ऐसे लोग जो हमारे आसपास होते हैं लेकिन वफादारी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो वो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ लोग चमचे भी कहते हैं, लेकिन इन चमचों की खासियत ऐसी होती है कि चमचे कभी वफादार नहीं होते और वफादार कभी चमचे नहीं होते। ये तो चमचे हैं, वो कहाँ तक साथ देते हैं और चमचों को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, ये एक अलग ही सवाल है। लेकिन इंसानी चमचे नहीं, लेकिन जो चम्मच काटे होते हैं, अब हम उनको हर जगह ले जा सकते हैं। कुछ कैफेज और रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हाइजीन और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें खुद अपनी कटलरी साथ लेके जानी है। तो जितने सारी हाइजीन फ्रीक्स हैं ये बात सुनकर बहुत खुश हुए होंगे। हर कैफे और रेस्टोरों में ये रूल नहीं है, लेकिन कई सारे कैफेज और रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर अपने चमचे हमें खुद साथ लेकर जाने हैं। तो अब तय करो इन चमचों को कहाँ कहाँ लेकर जाना है।

0: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ।
1: अब इंतजार करने की जरूरत नहीं।
2: क्यों?
1: क्योंकि अब आप हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं।
2: कैसे?
1: प्ले स्टोर में जाकर प्रसार भारती का न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कीजिए। एफएम रेनबो मुंबई को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं 24/7।
3: हाय, मैं हूँ सलीम मर्चेंट और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
4: कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए।
5: I am Madhuri Dixit and you're listening to me on FM Rainbow.
6: Hi, I'm Kabir Bedi and you're listening to FM Rainbow channel of All India Radio. We're an old-time
7: love. Namaste dosto, main hu Dino Moria aur aap sun rahe hain 107.1 Rainbow FM from All India Radio.

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
3: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
2: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
3: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: Now listen girls, please understand. First things first, I only want a shirt.

हम है राही प्यार के फिल्म का गाना और एफएम रेनबो के स्टूडियोज में रोशनी अभी भी आपके साथ बनी हुई है। म्यूजिक कैफे में आज बातें हो रही है ऐसे कैफेज और रेस्टोरेंट्स की जहां पर इको फ्रेंडली तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ कैफेज और रेस्टोरेंट्स है जहां पर चमचों का एक अलग तरीके से जो है इस्तेमाल करने की जो है अनुमति दी जाती है और चमचों से जुड़े कुछ उनसे वफादारी किस हद तक जो है उसकी उम्मीद रख सकते हैं ये बातें भी हुई। तो संजय दर्शन ने क्या खूब बात कही है कि अगर हमें हमारे हाथ साफ रखने हैं तब जाकर चमचे ही काम आते हैं। पर आप समझदार हो समझ जाओ कि ये बर्तन वाले चमचे उनकी बात हो रही है या फिर इंसानी चमचों का इस्तेमाल किस तरह करना है ये कहा जा रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे हाथ साफ रखने हैं तब जाकर ये चमचे काम आते हैं। लेकिन इन चमचों से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं किराने की दुकान पर। लेकिन ये मुंबई का भी दुकान नहीं है, मुंबई से थोड़ा आगे जाकर पुणे पहुँच जाते हैं। वहाँ का मशहूर किराने का दुकान है ये और वो इसलिए मशहूर है क्योंकि वहाँ पर लोग सामान लेने जाते हैं लेकिन लौटते वक्त अपने साथ छोटा पौधा या फिर बीज जो है रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ले आते हैं। इसी तरह साउथ ऑफ इंडिया में कई सारी उड़ीपी कैफेज है, वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि उनके साथ साथ और भी लोग जो है पर्यावरण के लिए कुछ ज़रूर अपने तरफ से करें। इसलिए वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके कैफे में पार्सल का जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो तरीका ये अपनाया गया कि लोगों को कहा गया अगर आप पार्सल चाहते हो आते वक्त एक स्टील का डिब्बा साथ ले आना, अपना ऑर्डर भी लेना और साथ ही आपको हमारी तरफ से एक स्टील का डिब्बा मिल जाएगा। यानी लोगों को हम इंस्पायर भी कर रहे हैं कि आप भी पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ करें और साथ ही जब छोटे छोटे तोहफे मिलते हैं लोग खुश भी हो जाते हैं और प्रेरणा शायद इन्हीं छोटे छोटे तरीकों से और गिफ्ट से मिलती रहती है।

0: एक ऐसा वक्त जहाँ पर लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे कि आप फिर अपनी तरक्की कैसे कर रहे, उसी पर ध्यान नहीं है, बल्कि हमारी जो प्रकृति है उसके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए किसी ने छोटी छोटी तरीके से ही शुरुआत की, यानी खुद का डब्बा साथ ही लेकर गए, किसी ने वही तोहफे में भेंट दे दिया, या फिर कुछ कैफेज़ और दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर अगर पार्सल ले जाना है तो स्टील के डिब्बे जो है डिपॉजिट के तौर पर दिए जाते हैं, और जब उन स्टील के डिब्बों को लौटाते हैं तो उसके जो पैसे दिए हुए थे वो फिर जो है कस्टमर्स को मिल जाते हैं। तो इस तरह भी किया जा रहा है, कहीं पर टिश्यू पेपर्स का बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर सिर्फ कपड़ों का नैपकिन ही जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। ऋतुओं के हिसाब से भी जब मेन्यू बदलता है तब भी पर्यावरण की मदद होती है, ये बहुतों ने जाना है, समझा है, और इसीलिए अपने अपने जो कैफेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पर इसका नियम जो है चल रहा है। तो हर कोई कोशिश तो कर रहा है कि वो अपने तरीके से, अपने तौर पर जो है पर्यावरण की मदद करे, उसकी सहायता करे। अगर उतनी भी कोशिश हम कर रहे हैं तो पैट ऑन आवर बैक्स बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हमें भी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना है, खुश रहना है। हमारे आसपास की जो लोग हैं और ख़ास तौर पर हमारी प्यारी सी धरती जो है उसके लिए भी हमेशा कुछ खास करने की कोशिश जो है ऐसी ही बनाए रखनी है। इसी नोट पर म्यूज़िक कैफे कार्यक्रम यहीं पर पूरा होता है। बैक टू बैक दो गाने हैं, लेकिन ये पर्यावरण से जुड़े बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी बात से जुड़े हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी नहीं लेकिन बहुत ज़रूरी है।
1: Tell y'all about money. You see, money is my best friend, 'cause money makes the world go round.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: म्यूजिकली योर्स आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर मैं रोशनी आप सभी का फिर एक बार स्वागत कर रही हूँ। 11 बजे से हमारी मुलाकात जो है शुरू हो गई है और अब तीसरा और आखिरी घंटा है हिट एंड हॉट, जहाँ पर आपके पसंद के गाने प्ले किए जाएंगे। और क्या बात है, ज़्यादातर लिसनर्स के अभी तक जो रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंची है, सभी ने काफ़ी मज़ेदार फन ट्रैक्स का सिलेक्शन किया है। तो मैंने भी सोचा यही मजाक और मस्ती जो है बरकरार रखते हुए क्यों ना आज हिट एंड हॉट में एक खेल खेला जाए या फिर कुछ सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे, लेकिन फिल्मी क्विज के साथ। तो कुछ फिल्मी सवाल मैं आपके लिए जो है पूछूंगी और उसके जवाब जो है आप बड़े अच्छे से सोच कर मुझे बताना, कहीं से भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। तो आप तैयार हो जाओ फिल्मी क्विज के लिए। तब तक पहली पसंद जो है आज राम प्रजापति की है, सौदागर फिल्म के गाने की फरमाइश। हम सभी इस गाने का लुत्फ़ उठाते हैं सिर्फ और सिर्फ एफ एम रेनबो पर।

0: قتل کیا تھا اور قاتل کون تھا یہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو, اور رہی اتہاس کی بات, یہ ٹھاکر راجیشور سنگھ اتہاس بتاتا نہیں.
1: क्विज के लिए तैयार है तो पहला सवाल ये है कि शाहरुख खान और कावेरी अम्मा जब कहते हैं तब कौन कौन से फिल्मों की बातें हो रही है जहां पर शाहरुख खान भी है और कावेरी अम्मा ये कैरेक्टर भी है. बताओ कौन कौन सी फिल्में याद आ रही है, और हो सके तो किसी की भी मदद ना लेना, खुद शाहरुख खान की सारी फिल्में याद करो और मुझे बताओ कौन सी फिल्मों की बातें हो रही है. अगला सवाल और आपके जवाबों के बीच क्यों ना अब संदीप कुमार की पसंद का गाना सुने, दूल्हे राजा फिल्म का बहुत ही मज़ेदार सा गाना, ओनली ऑन FM रेनबो.

लेकिन जब पूछा गया शाहरुख खान और कावेरी अम्मा ये दो कैरेक्टर्स साथ में आते हैं तो कौन सी फिल्म की बातें हो रही है, ज्यादातर लिसनर्स ने जवाब दिया है तो उनमें से सिर्फ आधा जवाब सही है अभी तक। तो मैं आपको और थोड़ा सा वक्त देती हूँ। चेतन कुमार, पंकज महोद, संजय दर्शन, शुभलक्ष्मी, प्रथमेश, सभी के जवाब सही है लेकिन ये आधा सही जवाब है। पूरा सही जवाब देना चाहते हो और थोड़ा सा वक्त, क्यों ना हम सब तब तक साथ मिलकर दिग्दर्शन और कविता की पसंद का गाना सुने। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

इसी तरह सही जवाब भी मुझ तक आ गए हैं, जिन्होंने आधे अधूरे सही जवाब मुझ तक पहुंचाए थे उनमें से ज्यादातर लोग

सही जवाब अब तक पहचान लिया है। मैंने प्यार किया फिल्म का गाना तो हमने सुना दिग्दर्शन कविता और संजय दर्शन की पसंद का, लेकिन सही जवाब किसने दिए हैं वो भी बता देती हूँ। और प्रणव शिंदे, ये क्या अपने सबसे पहले सही जवाब दिया है और आप ही अपने आप पर संदेह कर रहे हो? तो सही जवाब है शाहरुख खान और कावेरी अम्मा, ये दोनों एक साथ आते हैं स्वदेश फिल्म में, सबसे पहले हमने देखा। और उसके बाद हाल ही में रिलीज हुई फिल्म नई जवान में भी शाहरुख खान और कावेरी अम्मा का किरदार हमने देखा है। दोनों ही फिल्में ज़बरदस्त है और शाहरुख खान है तो सुपर हिट की गारंटी तो होती ही है। प्रणव शिंदे, संजय दर्शन, शुभलक्ष्मी, पंकज महोद, इतने सारे जो हमारे लिसनर्स हैं उन सभी ने सही जवाब हम तक पहुंचाया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों ना फिर शाहरुख खान की फिल्म का एक गाना हो जाए, जवान फिल्म के साथ ही इस गाने को जो है सुना जा सकता है। तो अब बस बहुत सारी आवाज़ों का मज़ा हम लेने वाले हैं, विशाल ददलानी, शिल्पा राव, अनिरुद्ध, रवि चंदर, ये सारी आवाज़ें सिर्फ FM रेनबो पर।

न्यूज ऑन एयर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। और अब कुछ ही पलों में यानी दोपहर के ठीक 1:30 पर हम सुनेंगे मराठी समाचार। तो सुनते रहो एफएम रेनबो।

मराठी समाचारों के बाद फिर एक बार हिट एंड हॉट कार्यक्रम शुरू हो गया है। रोशनी आपके साथ अभी भी बनी हुई है। एक सवाल जवाब तो हो गया है, फिल्मी क्विज के दूसरे सवाल का अब वक्त हुआ है, क्योंकि बस आखिरी के 20 मिनट है हमारे पास। और सवाल वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा मज़ेदार भी है, क्योंकि ये फिर एक बार किरदारों से ही जुड़ा हुआ है।

जब अंजलि नाम सुनते हैं तो कौन कौन से फिल्मों की याद आती है? अंजलि नाम और हिंदी फिल्में कौन सी याद आ रही है, जल्दी जल्दी मैसेज करके मुझे बताओ। और तब तक स्वदेश फिल्म का गाना हम कब से इंतजार कर रहे हैं वो साथ मिलकर सुनते हैं, आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी इस फिल्म से गाना और इस गाने की जो फरमाइश भेजी थी हमारे सवाल के जवाब देने वाले जिन्होंने सबसे पहला जवाब हम तक पहुंचाया यानी पंकज महोद, तो पंकज महोद ने सही जवाब भेजा है। सवाल ऐसा था कि जब हम अंजलि नाम सुनते हैं तो कौन कौन सी हिंदी फिल्में सबसे पहले याद आती है, और अपेक्षा सिर्फ दो ही फिल्मों की थी तो पंकज महोद, प्रांजल प्रसाद, इन दोनों ने सही जवाब मुझ तक पहुँचाए हैं। और उसी के साथ साथ प्रणव शिंदे और गणेश मगर मुंगी जो पैठन से हमें सुन रहे हैं, इन दोनों के पास तीन फिल्मों के नाम थे। एक है धड़कन, दूसरा कुछ कुछ होता है, तो धड़कन की अंजलि हम कैसे भूल सकते हैं, कुछ कुछ होता है कि अंजलि शर्मा और अंजलि खन्ना, ये भी हमें बहुत अच्छे से याद है। और उसी के साथ तीसरी अंजलि हमने देखी थी कभी खुशी कभी गम इस फिल्म में। तो ऐसे ये तीन फिल्में हैं जहां पर अंजलि ये किरदार बहुत अच्छे से हमें याद है। तो थैंक यू सो मच आप सभी आज के कार्यक्रम में और हमारे क्विज में आपने हिस्सा लिया, इसका हिस्सा बने, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही और भी कुछ सवाल मेरे पास है लेकिन वो सारे सवाल ऐसा करते हैं रविवार की दोपहर मिलते हैं और तब वही सारे सवाल जवाब का सिलसिला ऐसे ही कायम रहेगा। तब तक के लिए खुश रहो। ऐसा सुनने में आया है कि मुंबई के कई हिस्सों में बारिश हुई है, तो आप सभी को मॉनसून मुबारक। इसी नोट पर रोशनी आपको आज के लिए टाटा गुड बाय कह रही है। जैसे मैंने कहा, अगली मुलाकात रविवार के दिन। टेक केयर।

0: न्यूज ऑन एयर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। दोपहर के ठीक 2 बजे हम सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर हिंदी समाचार। तो सुनते रहो 107.1।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. 21

0: today. Former Home Minister Dr. G. Parmeshwar will be sworn in as the Deputy Chief Minister. Along with them, 12 legislators are to be sworn in as ministers today. More from our correspondent.
1: After Siddaramaiah stepped down as CM on May 28, the Congress Legislature Party had elected 64-year-old D.K. Shivakumar as its leader, paving the way for him to assume the office today. Congress leader Rahul Gandhi, National President Mallikarjun Kharge, Congress General Secretaries K.C. Venugopal and Randeep Singh Surjewala, and some Congress chief ministers, religious leaders, labourers, writers, actors, and prominent businessmen and industrialists have been invited for the swearing-in ceremony. The students of Doddalahalli Government School have also been called for the ceremony, as it is the place from where Shivakumar hails from. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
0: Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a five-day visit to India from today. During the visit, she will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi to review the full spectrum of India-Venezuela relations. The two countries will explore avenues for cooperation in key sectors including trade, investment, energy, renewable energy, healthcare and pharmaceutical. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
2: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है. हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं. उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व तो है.
0: The President called upon all the agencies and stakeholders to ensure the development of every aspect of tribal welfare, including dignified job for youth and school for every tribal child.
2: ये दूर दराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं उन तक एक रोडमैप बनाना चाहिए. आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी पॉपुलेशन के थे, ट्राइबल के कितने लोग हैं, कहां तक हम पहुंच पाए, कहां तक नहीं पाए. पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं. लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा.
0: She stressed that tribal youths must be encouraged to participate in sports activities. Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandaviya has urged India's youth to embrace cycling and lead the movement for a fitter, healthier and greener nation. Sharing a video message on the World Bicycle Day, the minister noted that adopting cycling as a regular habit can encourage a balanced and disciplined lifestyle while also supporting environmental sustainability and cleaner mobility. He added that cycling not only helps individuals maintain physical and mental well-being but also contributes towards building a healthier and greener nation.
3: Cycling हमें fit रखती है.
4: Cycling keeps us fit, energizes the body and improves mental health. The more we use the cycle, the less pollution there will be and the country will benefit from the saving of petrol and diesel. In this era of global challenges, Prime Minister Narendra Modi has also urged the people of the country to reduce their dependence on petrol and diesel vehicles. In this regard, cycling can become an effective and positive solution.
3: और सकारात्मक समाधान बनकर सामने आती है.
0: In Mizoram, Union Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Murugan, has called upon the people to actively participate in the nation-building process and contribute towards the vision of a developed India by 2047 under the Viksit Bharat initiative. During an interaction with government officials at Kolasib district, the minister emphasized that the central government places high priority on the development of the northeast region. Prime Minister Narendra Modi today shared an article authored by Union Minister Chirag Paswan highlighting the unlocking of new opportunities in Ladakh. In a social media post, the Prime Minister noted that a berry native to Ladakh is scripting a story of innovation and opportunity. He observed that the article presents a compelling reflection on how entrepreneurship and value addition are opening new avenues of prosperity in Ladakh. The RBI, Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee, began its three-day policy meeting in Mumbai today, with experts widely expecting the central bank to maintain the status quo on interest rates amid volatile global conditions driven by the ongoing tensions in West Asia. The policy decision will be announced on Friday. The June review comes amid sustained geopolitical tensions and volatile global crude oil and gas prices, which have complicated the outlook. Debunking reports of gold sales, the Reserve Bank of India today said there has been no change in its physical gold stock, which remains steady at 880.52 tons. The clarification comes after reports suggested that the central bank may have sold gold worth approximately $12 billion to shield its foreign exchange reserves from the impact of the ongoing conflict in West Asia. The United Nations Weather Agency has warned that a moderate to possibly strong El Nino is likely to develop in the coming months, raising concerns over higher global temperatures and more extreme weather events. According to the World Meteorological Organization, warming sea surface temperatures in the central and eastern Pacific Ocean are driving the phenomenon. The agency has forecast above average temperatures across most parts of the world from June to August and said El Nino conditions are likely to persist until November. The IMD has forecast hot and humid weather over parts of the northeastern region and Odisha, Konkan, Goa and sub-Himalayan West Bengal today. The Met Department has also predicted thunder squall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Telangana for today. In Indonesia Open Badminton, H.S. Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang in the men's singles this afternoon. In men's doubles, pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty suffered a setback after losing to Malaysia's Kai Shing Kang and Aaron Tai by 6-11 in their match today. Benchmark domestic equity indices were trading over 0.5% lower in the afternoon trade today amid geopolitical jitters. The Sensex lost 524 points to 74,125, while the Nifty fell 147 points to 23,336 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritabratha Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
6: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
7: जिनके का लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
2: जनजातियों समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
5: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और

0: बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।

0: दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
1: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

में रुलाती है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये हमें आगे बढ़ना सिखाती है। दोस्तों आज विश्व साइकिल दिवस है और सुबह आरजे अमित ने और फिर आरजे रोशनी ने बहुत सारी बातें की विश्व साइकिल दिवस के बारे में कि साइकिल एक्चुअली में कितनी सारी हमें यादें जो है ना हमारी साइकिल से जुड़ी हुई होती हैं। साइकिल सिर्फ दो पहियों वाली एक सवारी नहीं बल्कि हम में से कई लोगों के बचपन की सबसे खूबसूरत यादें हैं। याद है वो दिन जब पहली बार पापा या बड़े भाई ने सीट के पीछे हाथ पकड़कर हमें साइकिल चलना सिखाया था। हम बार बार उनसे कहते थे आप पकड़े रहना नहीं तो मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, बस आप पकड़े रहना बस आप पकड़े रहना। और जैसे ही हम अपना बैलेंस लेना सीखते पता ही नहीं चलता वो कब धीरे से अपना हाथ हटा लेते थे और जब पीछे मुड़कर देखते थे। और मुझे लगता है ये तो हम सबने किया है कि अरे भाई अचानक से साइकिल थोड़ी सी हल्की लगने लग रही है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखते थे और उसी वक्त गिर जाते थे। बस उनके सहारे के साथ हम साइकिल चलाना सीखते थे। फिर धीरे से वो अपना वो सपोर्ट हटा लेते थे क्योंकि पता था उन्हें कि आखिरकार साइकिल चलाना तो हम सीख ही जाएंगे, अपने दम पर आगे निकल ही जाएंगे। शायद दोस्तों ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है ना, कभी कोई हमारा हाथ पकड़ कर चलाता है और फिर एक दिन हमें खुद संतुलन बनाना सीखना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। फिलहाल कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बातों के साथ साथ लेते रहेंगे छोटे छोटे एंटरटेनमेंट ब्रेक्स भी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी आज दोस्त अमिता और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी। और आज विश्व साइकिल दिवस पर बस लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और घर की आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके पिता उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। रघु का स्कूल गांव से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर था। वो रोज पैदल स्कूल जाता, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या फिर हो ठिठुरती ठंड। कई बार तो उसे स्कूल पहुँचने में देरी भी हो जाती थी, पर स्कूल के टीचर्स को पता था, इसीलिए वो रघु को कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उसकी लगन, उसकी मेहनत और उसके दृढ़ निश्चय को देखकर सभी को हैरानी होती कि आखिर ये लड़का इतनी मेहनत कर रहा है तो अब उस पर उसे क्या ही बोला जाए।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा गाना खूबसूरत फिल्म से, और इस फिल्म के जितने भी गानों की जितनी भी तारीफ की जाए दोस्तों बहुत ही कम है। फिलहाल हम आते हैं कार्यक्रम में वापस। लव यू जिंदगी सुन रहे हैं आप अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ, और मैं सुना रही हूँ आपको एक छोटी सी कहानी बस आज विश्व साइकिल दिवस पर। अभी तक आपको बताया कि किस तरह से रघु जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी अपने स्कूल को वो कभी भी बंक नहीं करता था, और इसीलिए स्कूल में भी जो टीचर्स थे वो बहुत उसे मान सम्मान और उसे बहुत मानते थे। अब एक बार बहुत कोशिश करके मेहनत करके उसके पिता ने किसी तरह पैसे जोड़कर उसके लिए एक पुरानी साइकिल खरीद ली। साइकिल बहुत पुरानी थी, रंग भी उखड़ा हुआ था, यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है

यानी कि साइकिल की घंटी, वो भी ठीक से नहीं बजती थी। लेकिन उस साइकिल को देखकर रघु बहुत खुश हुआ। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने उस पुरानी साइकिल को भी एक नया रूप दे दिया। पुरानी ही सही, लेकिन रघु के लिए वो किसी हवाई जहाज से कम नहीं थी। अब बस रोज रघु उसी साइकिल पर बैठकर अपने स्कूल जाता और अब तो वो समय से पहले पहुंच जाता था। अब उसके पास ज़्यादा समय था स्कूल में बिताने के लिए, तो स्कूल के बाद वो लाइब्रेरी में भी रुकता, ज़्यादा पढ़ाई करता। अब तो उसके सामने समय की कोई पाबंदी ही नहीं थी। धीरे धीरे उसकी दुनिया भी बदलने लगी। और अब जब दुनिया बदली तो कैसे बदली ये भी आपको बताऊंगी, पर छोटे से ब्रेक के बाद।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
0: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
2: कोई लुभाए शेरो शायरी से
0: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
3: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
4: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

0: बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी।
1: पगली GPS फॉलो करना, नहीं तो गुम हो जाएगी।
0: अगर गुम हो भी जाओ तो कोई बात नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि पंछियों के पास भी कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें।
0: हाय, ये है FM Rainbow 107.1। यूं ही खट्टी मीठी बातों से जीत लेंगे आपका मन,
1: क्योंकि हम हैं म्यूजिकली यर्स।

शाम के ठीक 5:31 का वक्त दोस्तों सुन रहे हैं आप लव यू जिंदगी कार्यक्रम अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ. और यहाँ कार्यक्रम में मैं सुना रही हूँ आपको एक छोटी सी कहानी. और रघु की जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलें, जो उसे इतना दूर अपने स्कूल तक पैदल जाना पड़ता था, उन मुश्किलों में थोड़ी सी राहत मिल जाती है उसे जब उसे मिल जाती है वो साइकिल. अब वो साइकिल ही उसकी दोस्त भी हो जाती है. जो इतने घर से लेकर स्कूल तक का जो सफर था वो बस अपनी साइकिल पर ही किया करता था. समय बीतने के साथ ही रघु भी पढ़ लिख कर आगे एक बहुत बड़ा इंजीनियर बना और उसकी बनाई हुई इमारतें जग प्रसिद्ध भी हुई. एक बार जब एक इंटरव्यू में उससे ये सवाल किया गया कि भाई रघु, आप अपनी सफलता का सबसे बड़ा साथी किसे मानते हैं, तो थोड़ा सा वो भी कहते हैं ना पुरानी यादों में खो गया और मुस्कुराकर उसने कहा, शायद आपको अटपटा सा लगे या हो सकता है आपको यकीन भी ना हो, मगर मेरी वो पुरानी साइकिल वो मेरी साथी रही. लोग हंस पड़े लेकिन रघु ने आगे कहा कि अगर वो साइकिल नहीं होती ना तो शायद मैं रोज की थकान से ही हार जाता. उसने सिर्फ मेरा सफर छोटा नहीं किया बल्कि मेरे और मेरे सपनों के बीच की जो दूरी थी ना उसे भी कम कर दी. दोस्तों न जाने कितनी सारी यादें और किस तरह से कब साइकिल ने किसकी दुनिया बदल दी, क्या पता. तो आज जरा विश्व साइकिल दिवस पर आप भी अपनी साइकिल से जुड़ी हुई कोई अगर किस्सा हो, कोई ऐसी याद हो जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हो, तो ज़रूर से नंबर जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 8657661071 यानी कि 8657661071 इस नंबर पर तुरंत से कर दीजिए मैसेज. हमें इंतज़ार है आपकी उन बातों को, उन यादों को सुनने का.

5:46 का वक्त सुन रहे हैं आप कार्यक्रम लव यू जिंदगी अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ। और आज विश्व साइकिल दिवस पर मैंने आप सभी को सुनाई एक छोटी सी कहानी भी, और साथ ही साथ ये भी पूछा है कि आखिरकार अगर आपके भी जीवन में ऐसी कोई याद हो साइकिल से जुड़ी हुई, या तो फिर कई बार साइकिल ना भी सही, शायद दो पहिया साइकिल ना हो, आपको याद होगी अपनी वो तीन पहिया साइकिल जो बचपन में हम सभी ने खास तौर से खूब चलाई होती है, और उसके बाद जाकर मिलती है वो दो पहिया वाली साइकिल। राकेश माथुर लिखते हैं कि भाई बचपन में जब पहली बार खुद की साइकिल मुझे मिली थी तो जैसे पंख लग गए थे। साइकिल को बड़े प्यार से साफ करते, सुबह उसी से स्कूल जाते, और शाम को जब दोस्तों से मिलने जाना होता तभी वही साथ जाती, यानी कि साइकिल के साथ ही जाते थे। घर का काम या बाजार का छोटा मोटा काम करने के बहाने से साइकिल चलाने का मौका बस ढूंढते रहते थे। और ये राकेश माथुर का मैसेज आया है पुणे से। और साथ ही साथ विजेंद्र घटोल लिखते हैं कि भाई उन्हें गाने कार्यक्रम में बहुत अच्छे लग रहे हैं, सो धन्यवाद। वहीं संजय दर्शन का मैसेज आया है, लिखते हैं कि साइकिल मेरी हमसफर रही 2017 तक, रोज 20 से 25 किलोमीटर चलाते थे। उसको सवारना, दुरुस्त रखना एक अलग ही एहसास था। और एक बार मेरी साइकिल, मैंने रोड पे उसे पार्क किया था, रोड रोलर पीछे से आ रहा था और उसने देखा नहीं, और उसी रोड रोलर के नीचे उनकी साइकिल आ गई और पूरी तरह से फ्लैट हो गई और उसका ट्यूब भी फट गया। उसने पैसे भर के दिए पर मुझे बहुत दुख हुआ उस साइकिल खोने का, क्योंकि वो साइकिल सिर्फ साइकिल नहीं रह जाती, आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। वहीं पंकज मोहड़ लिखते

हैं अमरावती से कि भाई मेरे बचपन में मेरे घर पर साइकिल नहीं थी, इसलिए साइकिल सीखने का मौका जल्दी नहीं मिला। पर जब मेरे चचेरे भाई के यहाँ पर साइकिल आई तो उन्होंने मुझे साइकिल चलाना भी सिखाया और शुरुआत में बहुत बार लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि भाई इतनी बड़ी उम्र में अब मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूँ, लेकिन मैंने उन सब बातों को दरकिनार करते हुए साइकिल जो थी उस पर फोकस किया था। लेकिन थोड़े समय के बाद इन्होंने साइकिल चलाना छोड़ दिया। वहीं अंधेरी ईस्ट से अंजू जी का मैसेज आया है और वो लिखती हैं कि भाई मैंने साइकिल चलाना 9th स्टैंडर्ड में अपनी नानी के घर अहमदाबाद में सीखा था और बस इसी तरीके की यादें हैं। क्योंकि मुझे भी याद है कि मैंने साइकिल चलाना अब कौन सी उम्र में सीखा था ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जब प्लेन सरफेस पर पीछे से मेरे बड़ी बहन जो थी वो पकड़ करके चल रही थी मेरे साथ साथ, लेकिन फ्लैट सरफेस पर तब भी मुझे बैलेंस लेना नहीं आ रहा था। और ऐसे में हम मैदान में सीख रहे थे और एक जगह पर एक ढलान सी आई तो उन्होंने वहाँ पर जाकर के बस पीछे से वो साइकिल छोड़ दी और उस ढलान पर जो मैंने बैलेंस लेना सीखा उसके बाद तो बस फिर साइकिल पर बैठ करके साइकिल चलाना मतलब ऐसा लगता था कि सच में आप उड़ रहे हैं जब पहली पहली बार आप बैलेंस लेना सीख जाते हो साइकिल पर, और वो जो खुशी होती है दोस्तों उफ क्या बताओ। आप लोगों से बातें करते करते न जाने कितनी सारी यादें मेरी भी ताज़ा हो गई हैं। और एक समय था जब साइकिल सच में मेरी भी दोस्त थी, यानी कि कॉलेज में या स्कूल में कितनी भी टेंशन रहे, पढ़ाई में कितनी भी टेंशन रहे, लेकिन आप बस साइकिल उठाओ और उससे दो चक्कर लगा करके आ जाओ और फिर देखो आपका मूड कितना फ्रेश हो जाता था। और फिर लगभग 10-11 साल के ब्रेक के बाद मैंने फिर से साइकिल चलाई और वो भी जो यहाँ पर नाइट साइकिलिंग चलती है मरीन लाइंस पर, वहाँ पर जाकर के मैंने साइकिल चलाई थी और उफ वो भी अपने आप में एक बहुत ही अलग अनुभव था। हसमुख जी का मैसेज आया है माटुंगा से, लिखते हैं कि भाई मैं रेनबो मुंबई सुन रहा हूँ और बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, सो धन्यवाद। प्रकाश शिंदे लिखते हैं कि वो बचपन की यादें, वो बेफिक्री का समा, साइकिल की सवारी में ही था पूरा जहां, गिरना और संभलना फिर मुस्कुरा कर चलना, उस दो पहिए की सवारी से प्यारा था कहाँ। सेहत का ये तोहफा है, लंबी उम्र का ये राज, साइकिल की सवारी पर करो गर्व आज, जो रोज चलाए इसे बीमारी उससे रहे दूर, तंदुरुस्ती का सजता है इसके सिर पर ताज। भाई वाह, आपने तो बहुत ही अच्छी तुकबंदी कर दी है। और आगे लिखते हैं कि वैसे तो मैं स्कूल की दूसरी क्लास में था तभी साइकिल चलाना सीख लिया था, लेकिन जब 9th क्लास में था तब पिताजी ने मुझे जब ये 9th क्लास में थे तब पिताजी ने इन्हें साइकिल खरीद कर दी थी और तब उन्हें भी इतनी खुशी हुई थी कि बस पूछिए मत। वो साइकिल आज भी गांव के घर पर है, जब भी गांव जाता हूँ तो साइकिल से पूरे गांव घूमता हूँ और पिताजी से पैसे लेकर मिठाई खाता हूँ, वो बचपन के दिन मैं आज भी जीता हूँ। दोस्तों बस बचपन की वो यादें, वो छोटी छोटी बातें, बस उन्हीं के कहते हैं ना ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती हैं। फिलहाल बातों को देते हैं यहाँ पर एक अल्प विराम और सुनते हैं, लेते हैं ये म्यूजिकल ब्रेक।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में हम तुम पे मरते हैं फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना ओनली ऑन एफएम रेनबो जो है म्यूजिकली योर्स। और फिलहाल दोस्तों घड़ी भी इशारा कर रही है कि लव यू जिंदगी कार्यक्रम को समेटा जाए, लेकिन समेटने से पहले इतना तो ज़रूर कहूँगी कि दोस्तों आज जब हम कार, मेट्रो और यहाँ तक कि हर जगह पर जाने के लिए अब ऐप के ज़रिए कैब्स उपलब्ध है, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, फिर भी कभी कभी मन करता है फिर उसी बचपन में हम लौट आएं, जब साइकिल की रेस ही ओलंपिक से लगती थी।

जब बिना किसी मंजिल के भी गलियों में घूमना एक एडवेंचर होता था, जब जेब में पैसे तो नहीं होते थे लेकिन दिल में खुशियां बहुत होती थी। साइकिल हमें सिर्फ आगे बढ़ना नहीं सिखाती, वो सिखाती है कि संतुलन बनाए रखने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। अगर रुक गए तो गिर जाओगे, और यही शायद जीवन का भी सबसे बड़ा सच है। तो बस आज इस विश्व साइकिल दिवस पर अगर आपके घर के किसी कोने में आपकी वो पुरानी साइकिल खड़ी है तो आज थोड़ा सा प्यार उस पर भी लुटाइए, हो सके तो थोड़ा सा साफ सफाई करके उसे भी थोड़ा सा चमका दीजिए। बचपन की गलियों में खो जाइए जहाँ खुशियाँ बहुत महंगी नहीं थी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर ना उन्हीं दो पहियों पर ही हमने तय किया था। और चलते चलते एक बार फिर से बस वही कहूंगी जो कहा अभी, कि जिंदगी साइकिल की तरह ही है, अगर बैलेंस बनाए रखना है तो बस आगे बढ़ते रहना होगा। फिलहाल कार्यक्रम में बढ़ रहे हैं आगे इस गीत के साथ।

दिल का रिश्ता इस फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम लव यू जिंदगी होता है समाप्त। ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे हमारे नागपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार और मैं मिलूंगी आपसे ठीक 6:15 पर कार्यक्रम अंदाज़े बयां में।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल. मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त समता. और शाम का ये वक्त होता है कार्यक्रम अंदाज़े बयां का, जहां बात होती है भाषा की खूबसूरती की, शब्दों की नज़ाकत की और अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन के उस जादू की जो साधारण बात को भी असाधारण बना देता है. और आज हम बात करेंगे अलंकार की. अलंकार यानी आभूषण. जैसे गहने किसी व्यक्ति की सुंदरता बढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही दोस्तों अलंकार भाषा की खूबसूरती और बढ़ा देती है, उसे और ज़्यादा आकर्षक और ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा भावपूर्ण बना देती है. कविता हो, गीत हो या फिर हो रोज़मर्रा की बातचीत, अलंकार हमारी भाषा में वो रस घोल देती है जो सीधा दिल को छू जाए. और जब बात हो हिंदी फिल्मी गीतों की, तब तो फिर अलंकारों की एक पूरी दुनिया बसती है. और आज अंदाज़े बयां कार्यक्रम में ऐसे ही अलग अलग अलंकारों से सजे हुए कुछ गीत लेकर आई हूँ मैं आपके लिए.

लिबास फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में और रचना गुलजार की। और यहाँ दोस्तों हवा को मानो एक जीवित व्यक्ति की तरह प्रस्तुत किया गया जो आकर किसी को छू भी रही है, सहला भी जा रही है और इसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। जब उन निर्जीव समझी जाने वाली वस्तुओं या फिर जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं उन्हें भी हम एक ह्यूमन टच दे दें तो वहाँ पर आता है मानवीकरण अलंकार। अब इस गीत को आपने न जाने कितनी बार सुना होगा। इस गीत में हवा सिर्फ बह नहीं रही है, वो आपको छू भी रही है और एक अलग ही एहसास भी जगा रही है। गुलजार साहब के गीतों की यही तो ख़ास बात होती है कि वो प्रकृति को भी इंसानी भावनाओं से भर देते हैं।

0: आशा भोसले की आवाज़ में अंगूर फिल्म का ये गीत, और इस गीत में आपने जो झलक सुनी, या यूँ कहूँ कि इस गीत में जो अलंकार था वो था अनुप्रास अलंकार। बहुत ही सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया है कवि ने इस गीत में। रोज रोज, डाली डाली, भावरा भावरा, यानी एक ही ध्वनि, या यूँ कहूँ कि एक ही वर्ण की बार बार जो ये रिपीटेशन आपने इस गीत में सुना, वो अपने आप में एक बहुत ही स्वीटनेस इस गीत में पैदा कर देता है। और अनुप्रास अलंकार वही होता है जहाँ समान वर्णों की या समान ध्वनि के शब्दों की पुनरावृत्ति, यानी कि उसका रिपीटेशन हो, और उनके उस रिपीटेशन से ही उनका अपना एक संगीत बनता है। और इस रिपीटेशन की वजह से ही इस तरह के जो गीत है ना दोस्तों, वो सुनने के लिए भी मीठे लगते हैं, और सुनते ही उनके वो जो शब्द हैं वो भी हमारे कानों में गुनगुनाने लगते हैं। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम अंदाजे बयां अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ, और आज अंदाजे बयां कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अलंकारों की, वो अलंकार जो हमारी भाषा को सजाते हैं, उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और कार्यक्रम में बातें भी होंगी, और साथ ही साथ और भी एक से बढ़कर एक गीत मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, पर सब कुछ आपको बताऊंगी सुनाऊंगी लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल

0: करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में जीवा फिल्म का ये गीत दोस्तों अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ। और जो बात आपको पता है लेकिन हमारे जो नए सुनने वाले हैं उन सबको बता दूं कि अब आप चाहें जब चाहें जहां चाहें अपने फेवरेट एफएम रेनबो मुंबई को सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से। और जीवा फिल्म का ये गीत दोस्तों, रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले। अब भाई सपना कभी चलता है क्या? सपने तो हम देखा करते हैं, है ना, लेकिन बस अलंकारों की यही एक खूबसूरती होती है। यहाँ पर दोस्तों सपना वास्तव में चलता नहीं है, लेकिन कवि ने या यूं कहूँ कि गीतकार ने उन बातों को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए उसे गतिशील बना दिया है, यानी कि वो दिखा नहीं रहा, वो चला रहा है। सपना हम देख नहीं रहे बल्कि सपना हमारी आंखों में ही चल रहा है। और यहाँ पर दो अलंकारों की एक बहुत ही सुंदर आप कॉम्बिनेशन देख पाएंगे और ये है रूपक और मानवीकरण अलंकार, क्योंकि सपना मानो किसी जीवंत साथी की तरह हर दिन हमारी आंखों में आंखों के नीचे चल रहा है, साथ साथ हमारे साथ साथ

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।

आशा भोसले की आवाज में खूबसूरत फिल्म का ये गीत। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ, और आज अंदाज़े बयां कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अलंकारों की। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने अलंकार को हिंदी व्याकरण के रूप में पढ़ा होगा, पर उस वक्त ये नहीं हमने जाना था, ना ही हमने समझा था कि भाई इतने अच्छे तरीके से भी उसको हम कभी अनुभव कर पाएंगे, सुन पाएंगे। खूबसूरत फिल्म का जो ये गीत अभी आपने सुना, पिया बावरी, ये रूपक अलंकार का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। रूपक में उपमेय और उपमान के बीच इतना गहरा मेल कर दिया जाता है कि दोनों एक ही प्रतीत होने लगते हैं। यहाँ वो जो गायिका है, जो प्रेमिका है, वो बावरी जैसी नहीं बल्कि स्वयं बावरी बन गई है। जैसे हम भगवान की भक्ति में जब लीन हो जाते हैं तो उनके साथ ही एकाकार हो जाते हैं, ठीक वैसा ही कुछ भाव इस गीत ने हम तक पहुंचाया है। और आप लोगों की भी बातें मुझ तक पहुंच रही हैं। फिरोज सिगनपुरिया का भी मैसेज आ गया है, लिखे हैं कि भाई उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ राम प्रजापति का भी मैसेज आ गया है। पंकज मोहोड़ ने भी मैसेज किया है, लिख रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत बढ़िया लग रहा है और गीत तो बहुत ही पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ मुंबई से आरती का भी मैसेज आया है और लिखती हैं कि अरे वाह, जैसे ही मैंने रेडियो ऑन किया और आपकी आवाज़ सुनाई दी तो वो खुश भी हो गई हैं, तो धन्यवाद। और आगे लिखती हैं कि अलंकार, इतने सुंदर विषय पर आप बात कर रही हैं, अगर पहले पता होता तो और थोड़ा जल्दी सुनना शुरू कर दिया होता। खैर आरती जी, देर आए दुरुस्त है, हम फिर कभी बहुत सारी बातें करेंगे। वहीं प्रकाश शिंदे भी मैसेज कर रहे हैं, और ये हैं रजनीकांत पाटिल वाडवन से, और ये हैं प्रसाद शिंदे यवतमाल से, और श्रीधरन बाल चंद्रन का भी मैसेज आ गया है। और बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो अगले कार्यक्रम यानी कि हम तुम के लिए इतने आतुर हो गए हैं कि उन्होंने अपनी पसंद अभी से भेजना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपकी सारी पसंद आप तक पहुँचाई जाएगी, लेकिन फिलहाल अंदाज़े बयां कार्यक्रम में एक अलग अंदाज की बातें हैं और एक अलग अंदाज के गीत हैं।

और दोस्तों इस गीत में हमें बहुत ही सुंदर छटा देखने के लिए या यूं कहूं कि सुनने के लिए मिली उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा में कवि या लेखक या गीतकार कल्पना के सहारे किसी भी संभावना को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त कर देता है। जैसे कि यहाँ पर गीतकार ने अपनी प्रियतम की तुलना किसी फूल से, गुलमोहर से नहीं की, बल्कि ये कह दिया कि अगर गुलमोहर का नाम तुम्हारे नाम पर होता तो क्या अलग बात होती। दोस्तों अलंकार जो है हमारी भाषा को और भी ज़्यादा सुंदर कर देते हैं। अगर गौर करें तो हिंदी फिल्म संगीत का बहुत बड़ा खजाना जो है वो अलंकारों से ही सजा हुआ है। कभी हवा बातें करती है तो कभी चांद मुस्कुराता है, कभी आंखों में सपने चलते हैं तो कभी फूल किसी का नाम बन जाता है। अलंकार शब्दों को केवल अर्थ नहीं बल्कि देते हैं उन्हें रंग, सुगंध और संगीत भी। और आज अंदाज़े बयां कार्यक्रम अब बस यही समाप्त करती हूँ और चलते चलते सुनाती हूँ आपको ये मीठा सा गीत। दोस्तों अगली बार जब आप कोई गीत सुने तो सिर्फ धुने ही नहीं बल्कि उसके शब्दों में छिपे अलंकारों को भी पहचानने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि आपको भी कोई खजाना मिल जाए और ये भी कि हिंदी भाषा सचमुच में कितनी समृद्ध, कितनी सुंदर है।

0: Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर जो है म्यूजिकली योर्स। और आज की इस शाम मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता, लेकर अपना वही सुनहरा पिटारा जिसमें बहुत सारी बातें भी होती हैं और बहुत सारे होते हैं गीत। बातें तो बहुत सारी कर ली है मैंने 5 से 7 बजे के बीच, और अब ये वक्त होता है आपकी पसंद आप तक पहुँचाने का। कार्यक्रम है हम तुम, और आप अपनी पसंद के गाने हम तक पहुंचा सकते हैं 8657661071, यानी कि 8657661071 इस नंबर पर मैसेज करके। और शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम हम तुम इस मीठे से गीत के साथ, जिसकी रिक्वेस्ट भेजी है फिरोज सिगनपुरिया ने।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।

मुंबई से श्रीधरन बालकृष्णन और साथ ही साथ पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा की पसंद पर ये गीत हमने सुना फिल्म रेडी से। और दोस्तों 7:24 होने को है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम, जहां पूरी होती है आपकी पसंद, और मैं हूं आज आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता। आप चाहे ट्रैवल कर रहे हों या घर में बैठकर चाय का आनंद उठा रहे हों, या फिर हो सकता है कि आप बाहर कहीं घूमने निकले हों, आपका अपना एफएम रेनबो हर वक्त हर पल आपके साथ रहेगा न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से।

कपूर एंड सन्स इस फिल्म के इस मस्ती भरे गीत की रिक्वेस्ट हमें भेजी चैम्बर से काजल कक्कड़ ने। दोस्तों 7:33 का वक्त सुन रहे हैं आप कार्यक्रम हम तुम और मैं हूं आपके साथ आपकी आज दोस्त अमिता और पूरी तरह से कोशिश कर रही हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो पसंद है आपकी जो पसंद के गीत हैं वो आप तक पहुँच जाए। फिलहाल हमारी एक लिसनर है इनका नाम है जेबू और जब हम बात कर रहे थे लव यू जिंदगी कार्यक्रम के दौरान साइकिल की तब इन्होंने एक मैसेज भेजा था कि लिखा था कि भाई इनकी मम्मी जो थी वो एक बहुत साइकिल की एक जानी मानी जो कंपनी थी उनके उस कंपनी में उनकी मम्मी की कुछ जान पहचान थी और उस वक्त वो इन्हें और इनके बेस्ट फ्रेंड को उस फैक्ट्री में ले गई जहाँ पर साइकिलें बना करती थी और वहाँ पर जा कर के मान लो एक बच्चे को जब आप खिलौना की दुकान में ले जाते हैं तो तब जो एक कहते हैं ना जब वो जो फील होता है ठीक उसी तरीके की कुछ फीलिंग थी जेबू और उनके दोस्त के भी मन में दिल में। बस इट वॉज सो गुड टू बी ट्रू उस तरीके की सिचुएशन थी और उस वक्त उन्होंने अपने पसंद की साइकिलें वहाँ से ली थी और आज वो 63 साल की हैं और लिखा है कि ये एकदम हरियाली से जो घिरा हुआ एक जगह है यू कह सकते हैं कि जंगल है वहाँ पर रहती हैं और उस जगह पर साइकिल अभी भी आज की तारीख में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और लिखा है कि आकाशवाणी तो मैं बचपन से ही सुन रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है सो थैंक यू सो मच जेबू और हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ अपने दिल की बात हम तक पहुँचाने

के लिए। फिलहाल वक्त है कि आप तक आपकी पसंद के गीतों को पहुंचाया जाए, और अगला जो गीत है वो है यस बॉस फिल्म का, और इस गीत की फरमाइश भेजी है विठल मुंगसे ने अहिल्यानगर से।

पंकज बहोड़ और साथ ही साथ प्रकाश शिंदे की पसंद पर हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत अभी हमने सुना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। और दोस्तों अब घड़ी भी इशारा कर रही है कि ज़रा मैं आपकी पसंद तेज़ी से आप तक पहुंचाऊं। और अब अगला गीत आ रहा है बरसात फिल्म से और इस गीत की रिक्वेस्ट भेजी है राम प्रजापति ने।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आए दिल की
3: दास्तां। और आप म्यूजिकली योर्स इस चैनल के साथ बने रहिए कहीं भी कभी भी न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से। और दोस्तों, फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है हम तुम, और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता। और फिलहाल बहुत सारे मैसेजेस हैं जो अभी हमारा इंतज़ार भी कर रहे हैं। हिरन मगरी सेक्टर 4 से सुशील यादव, रेनू यादव का मैसेज आया है और लिखते हैं कि गुजरे ज़माने की यादें तो साइकिल से जुड़ी हैं, पहले कैची, फिर डंडा और फिर फर्राटे से चलाना, इसकी 3 स्टेज होती थी। साइकिल चलाना ही तो ड्राइविंग सेंस की सबसे पहली सीढ़ी मानी जाती थी।

थी और साथ ही साथ शारीरिक व्यायाम का प्राथमिक स्रोत भी था, कल भी था और आज भी है, जिसे चलाकर आज हम स्टेज पर हैं। पर अफसोस की बात है, इन्होंने जो देखा है कि भाई भारत की तुलना में अन्य देशों में इसका जो प्रयोग है वो ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ इन्होंने सभी सुनने वालों को विश्व साइकिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं। और बहुत सारे मैसेजेस हैं, ये है अरविंद कुलकर्णी का मैसेज इचल करंजी से, और साथ ही साथ एक और भी मैसेज आया है, हमें एक नहीं बहुत सारे हैं, ये है मुकेश कश्यप जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, पंकज, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितेक और बलवीर सिंह, और दत्तात्रेय आड़त कावेड़ापुर से मैसेज आया, और साथ ही साथ मैसेज आया राकेश माथुर का भी पुणे से, मेहर अरोड़ा का भी मैसेज आया और इंदौर से मैसेज आया, अजय साखरे का, और ये हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, सतीश अनेजा, बिमल अनेजा का भी मैसेज आया है, और मैसेज आया है मुकुंद कुलकर्णी का पुणे से, सुरेश काशीनाथ पाटिल और अविनाश कड़ू वाड़वन टिगरे पाड़ा से, गणेश पाटिल का भी वाड़वन से मैसेज आया, साथ ही साथ भाईंदर से बेंजामिन ने मैसेज किया आया, और इन्हीं कार्यक्रम में जो गीत हमने सुनाए आज पूरे 5 से लेकर के अभी तक के वो सारे ही गाने इन्हें बहुत पसंद आए हैं। रजनीकांत पाटिल का भी मैसेज आया वाड़वन से, और ये है हमारे साथ विजेंद्र घटोल अकोला से, मिलेश गजानन राउत और श्रेय मिलेश और आर्य मिलेश राउत टिगरेपाड़ा से, और अंजू का मैसेज आया अंधेरी ईस्ट से। दोस्तों आप सभी के मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब दो गाने आने वाले हैं बैक टू बैक, और इन दोनों गीतों के साथ ही दीजिए अपनी आरजे दोस्त अमिता को इजाज़त, इस वादे के साथ कि बहुत ही जल्द होगी हमारी और आपकी अगली मुलाकात। और ये जो दो गाने हैं इनके साथ पूरी होगी अजय साखरे और संजय दर्शन की पसंद।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।

0: अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता।

0: से।
1: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: ले रहा हूँ, सस्ती दवा मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrat Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader DK Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000.

till it's all talked away. Well, that's how it goes.

0: साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्रीक्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, फिर हूँ हाजिर आपका अपना प्रोग्राम रंगे महफिल लेकर। जी हाँ, दौर शुरू हो चुका है गीत और गजलों का, और आज फिर गीत और गजलें चुराने वाले हैं आपका दिल और चैन, और कुछ कुछ लोगों की उड़ने वाली है नींद। जी हाँ, आपको याद दिला दूं कि रंगे महफिल के सफर में भी आपके साथ रहेगी आपकी यही यही यही दोस्त, जिसका नाम है आरसी यानी रेखा चौधरी। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में सुनते हैं ये प्यारी सी गजल। जानती हूँ आपके मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, लेकिन किंतु परंतु सबसे पहले ये गजल सुन ली जाए और फिर बात आगे बढ़ाएंगे।

जी हाँ दोस्तों, हमारे कुछ दोस्तों में से एक हैं शर्मा जी, वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ गायब हो जाते हो। तो भाई मैं तो कहीं गायब नहीं होती, और आपको पता ही है कि आजकल तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आ रही हूँ, और अभी जो 9 बजे वाला प्रोग्राम था वो भी मैंने किया था, तो लगता है गायब आप ही हो जाते हैं। और बोलते हैं वही कि हम गायब हो जाते हैं, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाली बात हो रही है। मेरे पास जो मैसेज आया है, वो सबसे पहले जो मैसेज आया वो लिखते हैं, गुड इवनिंग रेखा जी, नमस्ते, होप टू हैव स्मूथिंग गजल अहेड। जयंत लिखते हैं पटना से, तो आई होप कि आपको पसंद आ रही होंगी, और सूथिंग गजल्स तो बनती ही हैं और जो दिल पर देती हैं खास दस्तक। एक और मेरे पास मैसेज आया है, क्या बात है, मेरा फेवरेट सॉन्ग या गजल, आज तो आंसू रुकने वाले ही नहीं हैं। ये चित्रा सिंह की आवाज़ है, उन्होंने पहचान लिया, बहुत बहुत धन्यवाद गज़ल के लिए। वो लिखते हैं वरुण फ्रॉम इंदौर, तो इंदौर से वरुण जी, मुझे लगता है कि आप ना गज़लों के बहुत शौकीन हैं, और ये जो गज़लें होती है ना वाकई, और ख़ास तौर से जो अभी समय है, इस समय में अगर सूथिंग गज़लें और सॉफ्ट रोमांटिक गीत सुने जाएं तो भाई दिल पर ख़ास दस्तक तो

ही है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, हर दर्द चुपचाप सहते हैं, चुप छुप जाओ आंखों में, बस जाओ सांसों में, धड़कना भी धड़कन भी करती है सदा आपके नाम की, वो दिल ही क्या जो वफा ना करे, तुझे भूल कर जिए कभी खुदा ना करे। वाह, बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन दोस्त, प्रॉब्लम एक ये है कि आपने अपना नाम नहीं लिखा है। तो भाई अपना नाम लिखना मत भूलिए। एक और मेरे पास मैसेज आया है, तो उन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो कहते हैं कि कभी कभी ना जब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं तो कभी कभी आंखें नम भी हो जाती हैं। तो भाई ये तो बात बिल्कुल सही है दोस्त, क्योंकि अगर पिछले साल की तरह आप बहुत अच्छे से इस साल भी हैं तो पिछले साल की यादें नहीं आएंगी या उससे पहले की भी यादें नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, अगर पिछले साल आप बहुत खुश थे या पिछले दिनों बहुत खुश थे और जो वक्त चल रहा है इसमें आपकी आंखें नम है या किसी बात को लेकर आप फिक्रमंद हैं, तब तो फिर वो हालात बनते ही हैं। दोस्तों पता है आपको, जब हम छोटे थे तो बहुत बहुत बहुत सारे बच्चे मिलकर पानी में खेलते थे, कागज़ की नाव बनाते थे, और जब हम ये गाना सुनते थे ना कभी कभी कहीं पे चलते हुए, भले ही रेडियो पर हो या फिर हो टीवी पर, तब हमें लगता था कि ये आखिर गाना बनाया क्यों गया है, ये गज़ल बनाई क्यों गई है, क्योंकि जब छोटे होते तो सारी गजलें वजलें जो भी होती हैं वो हमें गाना ही लगती हैं। बाद में जब बड़े होने के बाद पता लगता है कि गजलें होती हैं, गाने अलग होते हैं, गजलें अलग होती हैं। तो ये जब हम गजल सुनते थे, वो कागज़ की कश्ती, तो ये लगता था कि जो हम कश्ती होती है वो तो कागज़ की होती है, ऐसा सॉन्ग क्यों गाया गया है समझ में नहीं आता। जब धीरे धीरे बड़े होने लगे और जब बड़े हो गए और इस गाने का मतलब समझने लगे, एक एक लाइन का, एक एक शब्द का मतलब समझने लगे, तब समझ में आया कि इस गज़ल का एक एक शब्द वाकई बहुत कुछ कहता है। तो चलिए आज पुरानी यादों को थोड़ा सा ताज़ा कर लेते हैं और गीत कह लीजिए या फिर कहिए गज़ल, वो दोनों की आवाज़ में मतलब एकदम परफेक्ट बैठती है। और सच में कुछ लोग तो पुराने दिनों में चले ही जाते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ये दिन फिर कब आएंगे। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गज़ल।

देवदत्त परसौलिया जी हाँ, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस से वो लिखते हैं, नमस्कार रेस्पेक्टेड आरजे एंड ऑल टीम्स ऑफ एफएम रेनबो, नाइस वॉइस, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गाने गज़ल उनको पसंद आ रहे हैं और उन्होंने एक गज़ल की फरमाइश की है। वैसे तो दोस्त

0: ये जो हमारा प्रोग्राम है ना वो फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, फिर भी कोशिश करके देखती हूँ। अगर मेरे पास ये गज़ल हुई तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये गज़ल मुझे भी बहुत पसंद है और ये गज़ल बहुत बहुत बहुत कम सुनने को मिलती है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो आया है जी हाँ मोहम्मद इम्तियाज़ का, इम्तियाज़ जवाहर का, कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से। वो लिखते हैं, है खामोश रात, है खामोश रात, बस कोई साथ नहीं, कुछ बातें अपने आप से कर ले, जिन्हें जीने की चाहत हो जाती है। मुझे कुछ कुछ जो आपने लिखा है ना, और उससे पहले जो लिखा है, जो बड़ा वाला आपने मैसेज लिखा, तो वो तो पढ़ के मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं दोस्त। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा कम शब्दों में अपनी बात को रखने की कोशिश करा करें। लेकिन जो भी आपने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ऐसा क्यों आप सोचते हैं कि आपके साथ कभी कोई नहीं है तो आप अकेले हैं और इसलिए अपने आप से बातें कर लेते हैं? तो भाई हमारा पूरा रेन वो परिवार वो है, आप सभी के साथ तो है, तो आप अकेले कैसे हुए? और हम तो अपने आप को कभी अकेला महसूस करते ही नहीं, क्योंकि आप सबको हम अपने साथ हमेशा हमेशा समझते हैं। अब ये सही बात कितनी है, अब ये आप पर निर्भर करता है। हम आपके दिल में रहते हैं, हर दर्द चुपचाप सहते हैं, छुप जाओ आंखों में, बस जाओ सांसों में, धड़कन भी करती है सदा आपके नाम की सदा, वो दिल ही क्या जो वफा ना करे। ये मैं पहले पढ़ चुकी हूँ और इसी के आगे लिखा है कि आपकी हंसी में काफ़ी आपकी हंसी हमें काफ़ी पसंद है, हंसी खुशियों का एहसास है। बिल्कुल दोस्त है, हंसी हमेशा खुशियों का एहसास होती है, लेकिन कभी कभी हंसी में भी गम छिपा होता है। हाँ, वो अलग बात है कि आप किसकी हंसी को कितना पहचान रहे हैं या किसको कितना जानते हैं, क्योंकि यूं तो हालातों के थपेड़ों से न झुके न रुके हम, यूं तो हालातों के थपेड़ों से न झुके न रुके हम, पर इश्क, इश्क की चोट ने अपाहिज बना दिया हमें, अपाहिज बना दिया हमें।
1: लड़की के बीए पास करने की खुशी में इतनी शानदार पार्टी।
2: ये बेचैनी, ये इस्तराब मालूम होता है किसी खास मेहमान का इंतजार हो रहा है।
3: जी नहीं, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि सब लोग
4: हेलो विकास, तुम आ गए?
5: जी
4: आओ, मैं तुम्हें अपने मेहमानों से मिलाऊं। आपसे मिलिए, आप हैं मिस्टर यश कोहली, कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट करके अभी अभी लौटे थे, आजकल डिप्टी कमिश्नर है। और आप हैं मिस्टर विकास, मेरी लड़की के क्लास फेलो थे, बेचारे इस साल बीए में फेल हो गया। मिसेस कोहली, आपसे मिलिए, आप हैं मिस्टर खन्ना, टी प्लांटेशन और फ्रूट गार्डन के मालिक, लाखों रुपए की आमद। आप हैं मिस्टर विकास।
0: जी हाँ, तो ये आपने जो शब्द सुने कि किसी के पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, कितनी भी दौलत हो, लेकिन वो खुशियाँ कभी खरीद नहीं सकते, और जब खुशियाँ खरीद नहीं सकते तो फिर ऐसी दौलत का फ़ायदा क्या? इसलिए जब भी आप ये सोचें कि खुश रहना है, तो सबसे पहले खुश रखने की कोशिश की जानी चाहिए।

फिर जी चाहता है कि खामोशियों के मेले में गुम हो जाएं, फिर जी चाहता है कि अंधेरों में फिर से छिप जाएं, फिर जी चाहता है नींद ना आने पर भी आंखें मूंद कर किसी के सपनों में खो जाएं। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल, और रंगे महफिल को आप सुन रहे हैं दिल्ली और एनसीआर में 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज

0: और अब ऐप के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं, कभी भी कहीं भी। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। फिलहाल लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास। बने रहिए हमारे साथ।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

वेलकम बैक दोस्तों, आपके मैसेजेस लगातार मुझे मिल रहे हैं। एक हमारे दोस्त हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैं अगली बार कब आऊँगी। तो दोस्त, वैसे तो वादा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अब सोच रही हूँ मैं ये कि आप जब इतनी फरमाइश करते हैं इस प्रोग्राम की, मेरे इस प्रोग्राम की, तो फिर क्यों ना जल्दी आ जाए। तो जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं फिर बहुत जल्द मिलने वाली हूँ आपको 6 जून को जी, यानी कि 6 जून को, दो दिन के बाद। आज 3 हो गई, 4, 5 और 6 को हम मिलने वाले हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांतिनगर सोनीपत से। उन्हें भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और उन्होंने दिल से धन्यवाद दिया है और साथ में बहुत ही अच्छी और प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मेरे पास मैसेज है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तो दोस्त प्लीज़ अपना नाम ज़रूर लिखकर भेजिए। तो भाई, वैसे तो मैं नाराज़ नहीं होती हूँ, लेकिन आप क्या चाहते हैं, मैं नाराज़ हो जाऊँ? जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं आप सबसे नाराज़ रहूँ। तो अपना नाम लिखना मत भूला करिए अपने मैसेज के साथ। फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगी, यूँ तो आना जाना लगा ही रहता है तेरी गलियों में, यूँ तो आना जाना लगा ही रहता है तेरी गलियों में, आज कुछ ख़ास नज़र आया तेरी गली के नुक्कड़ पर। हजारों आंखें गड़ी थी मुझ पर, हजारों आंखें गड़ी थी मुझ पर, जी हाँ, हजारों आंखें गड़ी थी मुझ पर, और मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ तुझ पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वेलकम बैक दोस्तों। कभी कभी दिल करता है ना कि हम सिर्फ खामोश रहें और सामने वाला बस बोलता रहे, या फिर सामने वाला भी कुछ ना कहे, हम भी कुछ ना कहें, सिर्फ और सिर्फ दिल पर देते दस्तक गीत और गजलों का लुफ्त उठाते रहें। जी हाँ, आज मेरा भी मन कुछ ऐसा ही है कि बातें कम करूं, लेकिन दिल पर देते दस्तक गीत और गजलों कि जो खूबसूरत माला लेकर मैं आई हूँ वो आप सबके कानों के जरिए जी हाँ दिल में दे खास दस्तक। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मैसेज जो किया है वो मैसेज तो किया है, मैसेज अच्छा भी है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है और उन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा मैसेज कर दिया है। तो दोस्त, ये बात तो गलत है, मैं हमेशा कहती हूँ और फिर आप सबसे कह रही हूँ कि अपने मैसेज को जितना हो सके छोटा करके लिखिए। एक और मैसेज है, उसमें कहा गया है कि जगजीत सिंह जी की कोई भी अच्छी सी गज़ल प्ले कर दो प्लीज़। तो भाई देखिए, मैंने आते ही सबसे पहले जगजीत सिंह जी की ही गज़ल प्ले की थी और अब तक मैं शायद 2 या 3 गज़लें उन्हीं की आवाज़ में सुनवा चुकी हूँ। और अगर आपने नहीं सुनी है तो चलिए फिर से कोशिश की जाएगी। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। तो लीजिए मेरी प्लेलिस्ट में ये आवाज़ फिर से है।

0: रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करती है मुस्कुराते हुए, ऐसे ही कार्यक्रम सदा करती रहें। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आपका साथ रहेगा तो यूं ही मुस्कुराते रहेंगे और प्रोग्राम्स भी करते रहेंगे। और बस लेकिन दिल से यही दुआ करेंगे कि आपको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी लिखा है कि जाकर हमें भूलना जाया करो, जैसे हम आपको याद करते हैं आप वैसे ही हमें याद करा करो। भाई याद करने के तो कोई सवाल ही नहीं उठता दोस्तों, क्योंकि मैं कभी भी अपने लिसनर्स को, अपने दोस्तों को भूलती नहीं हूँ। इसलिए अगर भूला नहीं जाएगा तो फिर याद किसको किया जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जी हाँ दोस्तों, टिक टिक करती घड़ी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है बिना जुबान हिलाए कि आज का वक्त यहीं पर पूरा होता है, लेकिन किंतु परंतु फिर आपसे मुलाकात जरूर होगी। एक हमारे पास मैसेज आया, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। आदाब, हम भी आपको सुन रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से। फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा लिखते हैं तो, और आगे लिखा है, हमने तो बेशुमार यादों को डायरी में संजो कर रखा है। तो भाई थैंक यू सो मच फारूक अली खान जी और सभी सभी दोस्तों को मेरा, जी हाँ, यही कहना है कि आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह से, जी हाँ, मुस्कुराते हुए FM रेनबो इंडिया सुनते रहिए। फिलहाल अपनी दोस्त RC यानी रेखा चौधरी को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात जरूर होगी। शुभ या रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने इसे योगासन के वैश्विक खेल मानचित्र पर महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजकों तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय संबंधी केंद्रीय सलाहकार समिति की नई दिल्ली में उच्च स्तरीय राष्ट्रीय बैठक हुई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए योजना के वांछित परिणाम के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल पर बल दिया। उन्होंने बताया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक आकांक्षी अनुसूचित जाति समुदायों तक पहुंचने के लिए पीएम अजय योजना का दायरा विस्तारित किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर दो दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगी। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, श्रोता सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 12:05 और लीजिए भाई सुनते हैं जीरो आशो नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना।

का अभियान यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले पहले विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। श्री शाह के दौरे के सिलसिले में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय प्रशासनिक और सुरक्षा बैठक आयोजित की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। ब्रिटेन की विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पोस्वान को पराजित किया। मौसम विभाग ने आज केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 MHz पर। साथियों, समय हो रहा है रात्रि के 1:05 और 20 सेकेंड्स, और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक, और मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो लीजिए आनंद इन खूबसूरत से गीतों का।

दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है, कभी हमें रुलाता है।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सुहानी रात। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 2 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में हमारे श्रोता समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू

0: रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जागरूकता बढ़ाने, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन मजबूत बनाने, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI ने कंबोडिया में UPI भुगतान सुविधा आरंभ करने के लिए कंबोडिया के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक ACALEDA बैंक के साथ साझेदारी की है। भारत आने वाले कंबोडियाई नागरिक जल्द ही अपने घरेलू बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ऐप का इस्तेमाल कर पूरे भारत में लाखों UPI QR कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृह मंत्री त्रिपुरा दौरे के दौरान पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो स्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 2:05 और 21 सेकंड्स। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं आपके लिए कुछ ये प्यारे से गीत हम लेकर आए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

लाइना बने ये कार्यक्रम श्रोता सुन रहे थे। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 3 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में आप समाचार होंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली

0: पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जाँच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल विधानसभा में रतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो स्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़ी हुई हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में

कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस दुर्घटना पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और भारत सरकार और लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृह मंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारे कामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: कमल सी तेरी बोली
1: हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने।

0: क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।